फसम फसो माया में जो चक्कर फिरा के रे केसो फसन फसो माया में जो चक्कर फिरा के रे भजन ना पायो।

बाल भय भूरे गर्व भय चूरे अब का करे लाल। बाल भय भूरे

भजन करो हरि जगत करतार, भजन करो हरि जगत।

0: करो हरि जगत जगतारे भजन करो हरि जगत जगतारे भजन करो हरि जगत।
1: गंगा पार जबई हम करें पहला अपने।

हमन से भजलो रे हरी, तन से भजलो रे हरी, राम नाम है जग में।

0: बदलती जलवायु के लिए तैयार हम।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष
2: और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त वर्षा। हेलो हेलो हेलो, मैं यानी के वर्षा आपकी आरजे वर्षा और हम दोनों लेकर आए हैं आप सभी के लिए एक नया कार्यक्रम जिसका नाम है क्लाइमेट काउंटडाउन। जी हाँ साथियों, और इस कार्यक्रम को हम सुनेंगे अपने शुभ कल कार्यक्रम में।
1: तो सबसे पहले सभी श्रोता साथियों का पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यह क्लाइमेट काउंटडाउन क्या है। हमने कई

0: उल्टी गिनती के बारे में सुना है, जन्मदिन से लेकर आईपीएल और नए साल तक, लेकिन यह क्लाइमेट काउंटडाउन क्या है?
1: बिल्कुल सही कहा मनीष जी आपने। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्लाइमेट काउंटडाउन एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की श्रृंखला है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। जलवायु परिवर्तन वास्तविकता है और इसके बदलाव के लिए हम सभी समान रूप से जिम्मेदार हैं। हमारे पास हानिकारक प्रभाव को उलटने के लिए बहुत कम समय है और यदि हम अभी कार्य नहीं करते हैं तो हम सभी को बाद में पछताना पड़ सकता है।
0: सच है दोस्तों, क्योंकि आप सभी ने देश में हाल फिलहाल में आई तबाही को देखा होगा। बेंगलुरु में बेजोड़ बारिश के साथ बाढ़ जैसे हालात, उत्तराखंड में बादल फटना, हिमाचल प्रदेश में अचानक आई बाढ़ और तटीय क्षेत्रों में चक्रवातें होती हैं उनकी बढ़ती संख्या, उत्तर भारत में गर्मी की लहरें, सूखा और न जाने कितनी ऐसी कितनी प्राकृतिक आपदाएं आपने देखी होगी।
1: अरे मनीष जी, अरे सिर्फ बेंगलुरु में ही नहीं बल्कि उत्तरी भारत में पिछले कुछ दिनों से बेमौसम बारिश भी एक चिंता का विषय बन गया है। क्या आपने कभी गौर किया है कि पिछले कुछ वर्षों में मौसम का अनुमान लगाना कितना मुश्किल हो गया है? सर्दियों के लिए आपको मध्य दिसंबर का इंतजार करना पड़ता था, सितंबर का महीना ऐसा लगता है जैसे जून और मई की गर्मी हो, और अब अक्टूबर के महीने में बिन मौसम बारिश, ऐसा लगता है जैसे मैंने सीजन की पारंपरिक समझ खो दी है कि मौसम कब शुरू हुआ और कब खत्म होता है।
0: हाँ, हमें हमेशा से सिखाया गया कि चार मौसम होते हैं, लेकिन अब मौसम के बदलते मिजाज को देखें कि ये बताना मुश्किल हो जा रहा है कि आखिरकार कौन सा मौसम गर्मी का है या कौन सा बरसात का है।
1: सही कहा तुमने, नेप्स स्पेयर्स समाचारों की तुलना में मौसम से संबंधित खबरों पर अधिक ध्यान देते हैं। तो मनीष जी, हम इसका क्या मतलब निकालें? क्या मौसम में बदलाव सामान्य हो, मौसम स्थिर नहीं है, तापमान और वर्षा में ये दीर्घकालीन बदलाव जलवायु परिवर्तन की घटना का एक हिस्सा है?
0: इन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाना आवश्यक है, बस इसलिए हम लेकर आए हैं हमारा ये स्पेशल कार्यक्रम क्लाइमेट काउंटडाउन। दोस्तों, इस सीरीज के माध्यम से आप जानेंगे कि जलवायु परिवर्तन क्या है, इसके कारण क्या है, इसके क्या प्रभाव है। इस सीरीज में हम आपको ये भी बताएंगे कि हमें जलवायु परिवर्तन की परवाह क्यों करनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि किस तरीके से इससे लड़ सकते हैं और अपने पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं।
1: मैंने अक्सर लोगों को बात करते सुना है कि हम कैसे जलवायु परिवर्तन से अपने क्लाइमेट को बचा सकते हैं। यह प्रकृति की इच्छा है कि यह कैसे विकसित होता है, हम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते, और अगर हम कुछ कर भी सकते हैं तो यह सरकार का काम है, आम लोगों का नहीं। लेकिन दोस्तों, प्रकृति में बदलाव का कारण मानवीय गतिविधियां हैं जो जलवायु परिवर्तन की मुख्य संचालक हैं। हमारे जैसे सामान्य लोग ही इस परिवर्तन का कारण बन रहे हैं और हम सब मिलकर इस कुछ सरल क्रियाओं को अपने दैनिक जीवन में अपनाकर इस समस्या से लड़ने में मदद कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा वर्षा, और एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं आपसे और कुछ और बातें करेंगे पर्यावरण और उसमें हो रहे बदलाव के बारे में। तो आइए सुनते हैं।
2: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
0: तो यहाँ हम एक बहुत सी दिलचस्प कहानी के साथ वापस आ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सभी श्रोताओं का एक बार पुनः। हमारी कहानी दो किरदारों से बनी हुई है, एक सनी और उसकी दादी की इर्द गिर्द घूमती है। ज्यादातर लोगों की तरह दादी भी जलवायु परिवर्तन से जुड़ी कई बातें नहीं समझ पा रही हैं। वह मौसम, जलवायु और पर्यावरण के बीच के अंतर को लेकर उलझन में है। वह ये सोचती हैं कि उसके समय में चीजें आसान थीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को।
3: बेटा सुनो, मैंने आज अखबार में पढ़ा

0: पिछले 75 सालों में सितंबर का सबसे गर्म दिन है। क्या हो रहा है? यह सामान्य से कहीं अधिक गर्म है और मुझे याद नहीं है कि सितंबर में पहले कभी इतना उच्च तापमान दर्ज किया गया हो।
1: अरे दादी, पृथ्वी अस्वस्थ है। उसे तेज बुखार है और संक्रमण के लिए हम जिम्मेदार भी हैं। मैं पिछले 7 वर्षों के बारे में नहीं जानता, लेकिन मुझे पता है कि मेरे पिछले 16 वर्षों में मैंने इस तरह के गर्म मौसम का अनुभव नहीं किया है। निश्चित रूप से ग्रह अधिक गर्म है और इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जलवायु अब बदल रही है। मेरे शिक्षक कहते हैं कि यह सब जलवायु परिवर्तन से संबंधित है।
0: जलवायु परिवर्तन? पर ये जलवायु परिवर्तन क्या है और ये मैं कितना गर्म महसूस कर रही हूँ? कैसे संबंधित है ये? क्या जलवायु मौसम से अलग है? मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना।
1: दादी, इधर आओ। जलवायु और मौसम दो अलग-अलग चीजें हैं। मैंने ईबीएस शिक्षक से ने मुझे बताया कि किसी स्थान का मौसम वातावरण की अस्थायी स्थिति है, जैसे आंधी या गर्म दिन, जो कुछ घंटों, दिनों या हफ्तों में होता है। जलवायु एक स्थान के औसत मौसम है, जो लंबी अवधि लगभग 30 साल या उससे अधिक तक फैला हुआ है।
0: आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह मेरे लिए समझ से बाहर है। कृपया मुझे इसे सरल भाषा में समझाएं।
1: अरे मोरी प्यारी दादी, ठीक है, अब ध्यान से सुनो। मौसम की स्थिति अल्पकालिक परिवर्तन है, जबकि जलवायु एक दीर्घकालीन घटना है, जो किसी स्थान के सामान्य मौसम को लंबी अवधि के लिए संदर्भित करती है। मनुष्य कुछ ऐसे काम कर रहा है जिससे पृथ्वी की जलवायु तेजी से बदल रही है। ये परिवर्तन मौसम में व्यवधान पैदा करते हैं। और तो और दादी, गर्मी की लहरें, बारिश में देरी, अचानक बाढ़ आना, बार बार सूखा पड़ना, भूस्खलन और फसल खराब होना, ये सभी जलवायु परिवर्तन के कारण है दादी। मानवीय गतिविधियां ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाकर ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती हैं दादी।
0: अरे बेटा, अब ये ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है?
1: ओहो दादी, यह तब होता है जब कुछ गैसें, जिन्हें ग्रीन हाउस गैसों के रूप में जाना जाता है, पृथ्वी के वायुमंडल में जमा हो जाती हैं।
0: रुको रुको बेटा, यह कैसा माहौल है और अब यह कहाँ से आया?
1: अरे दादी, वातावरण गर्मी को पकड़ लेता है और उसे निकलने नहीं देता है, जिससे तापमान नियंत्रित रहता है। यानी पृथ्वी ना ज्यादा गर्म रहती है और ना ही ज्यादा ठंडी रहती है। यह जिस हवा में हम सांस लेते हैं, उसे बनाए रखने और हानिकारक यूवी किरणें को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकने के लिए जिम्मेदार है।
0: हर बार जब आप कुछ कहते हैं बेटा जी, तो आप उन अवधारणाओं और शब्दों का परिचय देते हैं जो मुझे समझ में नहीं आता। सरलता से समझाएं, मुझे यह भी बताएं कि यूवी किरणें क्या हैं।
1: ओ मेरी दादी, यह इतना जटिल नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे जब बहुत ठंड होती है और आप परतें पहनते हैं, एक ऊनी ब्लाउज, एक स्वेटर और फिर एक शॉल। इसी तरह वातावरण को उन परतों की तरह समझें, एक कम्बल जो इसे बचाने के लिए पृथ्वी को घेरता है। यह मुख्य रूप से ऑक्सीजन से बना होता है, जिसमें हम सांस लेते हैं, ऑर्गन और नाइट्रोजन। यह हमें सुरक्षा प्रदान करता है और हानिकारक यूवी किरणों को पृथ्वी से दूर रखता है। वायुमंडल पृथ्वी के तापमान को नियंत्रण करता है। यह एक सुरक्षा कवच है, आपकी शॉल की तरह, जैसे आपका शॉल है उसी तरह। क्या अब समझ में आता है?
0: ठीक है बेटा, तो वातावरण, मौसम और जलवायु सभी

0: जुड़े हुए हैं और एक में परिवर्तन से दूसरे में परिवर्तन होता है, इतना तो मैं समझ चुकी हूँ। लेकिन सनी बेटा, मुझे कुछ बताओ, क्या अलग अलग मौसम जैसे वसंत, गर्मी, मानसून, सर्दी और शरद ऋतु में भी जलवायु का हिस्सा है?
1: सन्नी एक धैर्यवान लड़का था। दरअसल उन्हें इस

0: होती हैं जो वर्ष के हफ्तों और महीनों में होने वाले कुल मौसम के आधार पर विभाजित होती हैं। मौसम वह है जो वातावरण की परिस्थितियों थोड़े समय के लिए होती हैं और मौसम में बदलाव से जलवायु में परिवर्तन होता है जो कि 30 वर्षों या उससे अधिक समय में किसी स्थान पर औसत मौसम की स्थिति होती है।
1: दादी अपने पोते से बहुत प्रभावित थी।
2: अब जब आप इन सब बातों का जिक्र करते हो बेटा, तो यह मुझे समझ में आता है, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, हम अक्टूबर के महीने में अपने कम्बल और सर्दियों के कपड़े निकाल देते थे, लेकिन अब हम दिसंबर के मध्य तक मुश्किल से सर्दियों के कपड़े पहनते हैं। क्या जलवायु परिवर्तन भी इसका कारण है?
0: इसके लिए जलवायु परिवर्तन जिम्मेदार है दादी। जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, मौसमी परिवर्तन अधिक अप्रत्याशित हो जाते हैं।
2: सनी बेटा, मुझे एक बात बताओ कि क्या यह जलवायु परिवर्तन केवल शहरों को प्रभावित कर रहा है या ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होते हैं?
0: दादी, जलवायु परिवर्तन ने किसी को नहीं बख्शा।
3: फिर लोग इसके बारे में अधिक बात क्यों नहीं कर रहे हैं और कोई समाधान क्यों नहीं देख रहा है?
0: दादी, मुझे लगता है मैंने आपको एक दिन के लिए पर्याप्त जानकारी दे दी है।
2: नहीं नहीं, लेकिन माहौल के बारे में और बताओ।
1: लेकिन दादी ने जोर देकर कहा कि सनी ने जितना साझा किया था, कहीं अधिक वह अब शोषित कर सकती हैं। कोई विकल्प ना रह जाने पर वह समझाने लगा।
0: दादी, वातावरण 5 प्रमुख परतों, तापमान और पृथ्वी से दूरी के आधार पर समताप मंडल वायुमंडल की दूसरी परत है। स्ट्रेटोस्फीयर के भीतर एक ओजोन ढाल या परत है जो सूर्य के अधिकांश पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है।
2: ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो मैं मान रही हूँ, अब हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है ना?
0: हाँ दादी, ये बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि यह मानव त्वचा जैसे जीवों की सुरक्षात्मक परतों में प्रवेश कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं ये किरणें हम तक कैसे पहुँचती हैं?
2: अगर मुझे इतने जटिल प्रश्न का उत्तर पता होता तो क्या मैं आपके साथ यह बातचीत कर रही होती, चतुर साहब?
0: दादी, बहुत सही। ओजोन परत पतली हो रही है क्योंकि हमने रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज, एसी जैसे उपकरणों का उपयोग बढ़ा दिया है। वे क्लोरोफ्लोरोकार्बन या सीएफसी के रूप में जानी जाने वाली गैस छोड़ते हैं जिससे पृथ्वी के वातावरण और जलवायु में गंभीर परिवर्तन हुए हैं।
1: दादी चिंतित थी। उसने जवाब दिया कि यह इतनी गहरी चिंता का विषय है तो लोग इस मुद्दे पर अधिक बात क्यों नहीं कर रहे हैं?
0: मैं मानता हूँ कि इस मुद्दे पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन क्या करें दादी, लोग उन्हें पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं कर पा रहे हैं।
1: दादी अब बहुत डर गई थी। वह सवाल पूछने लगी कि
2: हम इस मुकाम पर कैसे पहुँचे? सनी बेटा,
1: उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारी पुरानी और वर्तमान पीढ़ियों ने आने वाली पीढ़ियों के लिए ग्रह को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं किया। दादी स्तंभ रह गईं। वह सोचने लगी कि और क्या किया जा सकता है। वह सनी से बात करना चाहती थी, लेकिन तब तक सनी के ट्यूशन जाने का समय हो गया था। उन्होंने दादी से वादा किया कि वे हर दिन जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करेंगे और वह उन्हें बताएंगे कि उनकी पीढ़ी अलग तरीके से क्या कर सकती थी। सनी ने अपना बैग उठाया और चला गया। दादी अपने अखबार में वापस आ गईं और सबसे गर्म दिन पर समाचारों को समझने की कोशिश करने लगीं।

0: दोस्तों, दादी और सनी की बातचीत ने वास्तव में हम सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। हमें अपने कार्यों पर ध्यान देने की जरूरत है जो मौसम और जलवायु को प्रभावित करते हैं। हमारे कार्यों से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और हमें इस पर ध्यान देना और तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
1: अरे वर्षा, न केवल तेज गति से जलवायु बदल रहा है बल्कि इस तरह की समस्याओं से पृथ्वी ग्रह को अपनी रक्षा करने के लिए सभी प्राकृतिक सुरक्षा से समझौता किया गया है। ओजोन परत, जो कि वायुमंडल की एक पतली और महत्वपूर्ण परत है, घट रही है। वो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें पौधों, जानवरों और मनुष्यों को समान रूप से नुकसान पहुंचा रही हैं। अनियंत्रित मानवीय कार्यों के परिणाम स्वरूप पर्यावरण में गंभीर परिवर्तन हुए हैं, जिसका परिणाम पहले से भुगत रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए और भी बुरा हाल होगा।
0: प्रिय मित्रों और श्रोताओं, आइए हम इतने निराश ना हो, जबकि स्थिति गंभीर है। यह निराशाजनक नहीं है, इस तथ्य के बावजूद कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है, हमारे पास अभी भी अपने कार्यों को उलटने का समय है। हम जिन सरल क्रियाओं को अपनाते हैं और उनका उपयोग करते हैं, उनके जितना हम सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक व्यापक परिणाम हो सकते हैं। हम में से हर एक छोटे छोटे उपायों से जलवायु परिवर्तन से लड़ने में योगदान दे सकता है, जिन्हें हम अपनाते हैं।
1: सकारात्मकता के लिए धन्यवाद वर्षा। हाँ दोस्तों, अगर हम सब मिलकर काम करने और समाधान के बारे में सोचने का फैसला करते हैं और नई और पुरानी प्रथाओं से सीखते हैं, तो हम जलवायु परिवर्तन का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन हमें अब कार्रवाई करनी होगी। अगले सप्ताह उसी समय ट्यून करना ना भूले क्लाइमेट काउंटडाउन के अगले एपिसोड में। यदि आपके कोई प्रश्न है तो हमें पूछ सकते हैं हमारे इस नंबर पे। नंबर है हमारा
0: 9425141726। और श्रोताओं, हमारा पत्र लिखने का पता भी है। हमारा पता है
1: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा।
0: हम अभी के लिए आपकी छुट्टी लेते हैं, लेकिन अपने स्वयं के रेडियो बुंदेलखंड पर बने रहें। सुनते रहें रेडियो बुंदेलखंड 90.4, अपना रेडियो अपनी बातें। तो साथियों, चलते हैं इस कार्यक्रम से, फिर होगी मुलाकात अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए नमस्कार।
2: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल। वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है। वृक्ष लगाइए, जीवन बचाओ।

0: बदलती जलवायु के लिए तैयार हम।
1: किसी ने बड़ा खूब लिखा है कि कोई चलता पदचिन्हों पर, कोई पदचिन्ह बनाता है और पदचिन्ह बनाने वाला ही इस जग में पूजा जाता है। सभी श्रोता साथियों का आपके अपने रेडियो साथी मनीष
2: और आपके अपने रेडियो दोस्त वर्षा बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में। और साथियों, हम होंगे कामयाब में हम बात करेंगे आज सफल कहानी को लेकर नंदिनी दीक्षित जी से। जी हाँ श्रोताओं, तो अब देर नहीं करते हैं क्योंकि ऐसी ही एक कहानी हमारे बीच में आज फिर से मौजूद है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण को लेकर बहुत अच्छा कार्य किया है। तो हम देर नहीं करते हैं, आप सभी को ले चलते हैं नंदिनी दीक्षित जी के पास।
1: और नंदिनी दीक्षित जी से हम जानते हैं कि किस तरीके से वो कामयाब होती चली गई और आज इस मुकाम तक पहुंच गई हैं। आज उनसे प्रेरणा लेकर बहुत सारे लोगों ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर काम करना शुरू कर दिया है। तो आइए आपको सीधा ले चलते हैं नंदिनी दीक्षित जी के पास, उनकी कहानी को हम जानते हैं कि किस तरीके से पर्यावरण संरक्षण को लेकर उन्होंने कार्य किया है। तो आइए सुनते हैं नंदिनी जी को, जिनसे बात कर रहे हैं शशांक दुबे जी, एजुकेशन ऑफिसर हैं। तो आइए इनकी वार्ता को हम सुनते हैं।
2: साथियों, नंदिनी दीक्षित जी से हम आगे बातचीत जरूर करेंगे, उनकी कहानी को सुनेंगे कि किस तरह से उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को लेकर काम किया हुआ है अपने क्षेत्र में और काफी काम वो अभी भी कर रही हैं। जहां पर वो पढ़ाई कर रही हैं वहां पर भी वो पर्यावरण को लेकर कार्य कर रही हैं लगातार। तो उनसे हम बातचीत आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर हम एक छोटा सा लोकगीत सुन लेते हैं पर्यावरण से जुड़ा हुआ, उसके बाद लौट के आते हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में।
3: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल, वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए जीवन।

0: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में अबे अपन ने सुनो ही प्यारे से लोकगीत खो जीखों गा रहे थे बालिक दास कुशवाहा और उनके साथी। और अब हम देर नहीं कर रहेंगे, आपको ले चलेंगे सीधे नंदिनी दीक्षित जी के पास, जिसे बातचीत कर रहेंगे शशांक जी, और उनसे जानेंगे कि कैसे वे प्रेरित भई थी, कौन तरह से उनने पर्यावरण को समझो और फिर उनके बाद वे काम करने लगी पर्यावरण को लेके। तो आओ उन्हीं से सुना थेंगे उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी।
0: नंदिनी जी
2: नमस्ते।
0: नंदिनी जी, हमारे साथ जो आज लिसनर्स जुड़े हुए हैं इस रेडियो चैनल के माध्यम से, क्या आप उनको अपना नाम और उस जगह के बारे में कुछ बातें बता सकते हैं जहां आप बड़े हुए हैं?
2: तो देखिए, मेरा नाम है नंदिनी दीक्षित और मैं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के बचेली नगर की निवासी हूँ। और मैं बेसिकली अभी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में बीटेक की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। और मैं बेसिकली तो मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, कानपुर से हूँ मैं, बट हम यहाँ शिफ्ट कर गए थे दंतेवाड़ा बचेली में, एंड बचेली इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, तो नेचर से काफी कनेक्टेड है वो जगह।
0: शुक्रिया नंदिनी जी। नंदिनी जी, आपने पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो कार्य करे हैं उसकी शुरुआत किस जगह से करी थी और क्या क्या कार्य आपने संरक्षण के प्रति करे हैं?
2: एक्चुअली मेरे डैड पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रहे थे, तो वो एक उन्होंने 26 जुलाई 2019 को एक वन बट की शुरुआत की थी। उस वन का नाम अमोद अरण्य है और इसको हमने कारगिल दिवस पर कारगिल योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के रूप में की थी। हम बैरन लैंड पे प्लांट्स लगा रहे थे और उन्हीं से मैं इंस्पायर होके मैं खुद एक कैंपेन चलाती हूँ, एक पेड़ शहीदों के नाम, जिसके तहत मैं हर महीने की 19 से 25 तारीख को शहीदों के नाम पे पौधारोपण करती हूँ। तो इसी के साथ हम स्टूडेंट्स के लिए भी कैंपेन चलाते हैं। हम स्टूडेंट्स को बेसिकली हम नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वो यूथ है और यूथ हमारे फ्यूचर जनरेशन को किस तरीके से अच्छे से, हमारे फ्यूचर जनरेशन है वो, तो वो अच्छे से पर्यावरण को समझे और उसके लिए कार्य करें, तो उनके लिए हम कैंपेन चलाते हैं। हम डोर टू डोर अवेयरनेस कैंपेन भी चलाते हैं और इसी के साथ हम जैसे प्लास्टिक के लिए भी कैंपेन चलाते हैं, इको ब्रिक्स बनाने। और यहाँ पे जैसे बचेली में हमारे कैंपेन से काफी घर ऐसे हैं जो अपना घर का प्लास्टिक घर में ही रखते हैं, तो बेसिकली अपने फादर से मैंने इंस्पायर होके ये चीजों की शुरुआत की थी, एंड होपफुली ये कंटिन्यू कर रहे हैं हम और आगे भी करते रहेंगे।
0: तो जो आप युवाओं के लिए उनको प्रेरित करते हैं कि वो पर्यावरण का संरक्षण करें, पर्यावरण की हर चीज को बारीकी से समझें, इसमें आपने किस तरह की चुनौतियों का सामना किया है?
2: तो सबसे बड़ी चुनौती जो मैंने फेस की है वो, क्योंकि मैं एक सिंगल गर्ल चाइल्ड हूँ, तो मेरे पेरेंट्स तो बहुत सपोर्टिव है, दे ऑलवेज सपोर्ट मी, जो मुझे करना है वो, मुझे कभी ऐसा कुछ नहीं, वो हमेशा मुझे प्रेरित करती कि नहीं आपको ये करना है आप कीजिए, बट लोगों से वो रिस्पॉन्स नहीं आता था। पीपल वे लाइक कि आप, मतलब एक आपकी बेटी, आप ऐसा इस लाइन में क्यों डाल रहे हैं, इस लाइन में क्यों डाल रहे हैं, तो ये चीज तो थी। साथ में रिस्पॉन्स बहुत कम आता था, लोग उतना, मतलब लाइक इतना इस चीजों, पर्यावरण और ये सब चीजें इतनी सीरियसली लेते नहीं थे। तो अभी भी मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं पूरा ओवरकम कर गई हूँ इन सब चीजों से, बट काफी हद तक हमने लोगों को प्रेरित किया है और उनको पर्यावरण से जोड़ने की कोशिश की है।
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया नंदिनी जी। सो आज जो हमारे साथ लिसनर्स जो जुड़े हुए हैं इस रेडियो चैनल के माध्यम से, जो युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, के अनुसार उनके लिए ऐसा क्या मैसेज है जो उनको ध्यान से सुनना चाहिए और भविष्य में वो कार्य करने चाहिए, ऐसे कौन से कार्य आप उनको बता सकते हैं?
2: जी, तो देखिए, मेरा पर्सनली ये मानना है कि छोटे छोटे स्टेप्स बहुत मैटर करते हैं, जैसे बूंद बूंद से घड़ा बन भरता है, तो ऐसे छोटे स्टेप्स बहुत मैटर करते हैं और इंडिविजुअल एक्शंस तो बहुत जरूरी है। हमें खुद से समाज तक जाना है और खुद को, पहले खुद को बदलना है, खुद को एक एग्जाम्पल सेट करना है समाज के सामने। तो आप किसी भी सिचुएशन में, आप कहीं भी हो, आप पर्यावरण संरक्षण के लिए छोटे छोटे कार्य भी करते तो वो बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मैं बाहर हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में, मैं अपने पीजी में हूँ, बट स्टिल मैं इको ब्रिक्स यहाँ पे भी मैं बनाती हूँ। तो लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप कहीं भी हो, पर्यावरण संरक्षण के लिए छोटे छोटे कार्य करिए। आप जैसे इको ब्रिक्स मैं बनाती हूँ, आप इको ब्रिक्स बना सकते हैं, और फिर लाइक बहुत सारी चीजें हम, जैसे हमें प्लांट्स पे ज्यादा डिपेंड रहना चाहिए, मेरा ऐसा पर्सनली मानना, प्लांट्स पे डिपेंड रहिए, आप अपना थैला खुद लेके जाइए बाहर, ऐसे बहुत सारी चीजें लाइक लाइट ऑफ लाइट ऑन, ये हमको बचपन से सिखाया जाता है। तो ये सब कुछ चीजें हैं, आप यहाँ से शुरुआत करिए और फिर आगे तो फिर बढ़ेगा ही। तो मेरा सबसे यही है कि आप छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए और घर से अपने शुरुआत कीजिए, एक पेड़ लगाइए अपने घर पे और उसके अच्छे से केयर कीजिए, तो आप उससे कनेक्ट होंगे। तो जब आप नेचर से कनेक्ट होंगे तो आप खुद आइडियाज निकालेंगे कि और ऐसा क्या कर सकते हैं हम मदर नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो है कि कई चीजें ऐसी होती हैं जो पर्यावरण को हार्म कर रही होती है पर हमें उनके बारे में ज्यादा पता नहीं होता है, तो हमें उन चीजों के बारे में रिसर्च करना है, हमें पढ़ना है और सजग रहना है, और सभी चीजों के प्रति हमें संवेदनशील रहना है। हमें हमें पेड़ में हमें जान महसूस करनी है, हमें संवेदनशील इतना होना है कि हम सब चीज में जान महसूस करें। तो ऐसा छोटे छोटे ऐसी चीजें हमें करते रहनी चाहिए।
0: शुक्रिया नंदिनी जी। आपके अनुसार पर्यावरण से रिलेटेड शिक्षा, पर्यावरण से की जो जागरूकता है हमारे अंदर, वो कैसे और अच्छे तरीके से छोटे बच्चों में और युवाओं में जनरेट करी जा सकती है?
2: आई थिंक ये चीजें प्रैक्टिकल के थ्रू ज्यादा की जा सकती है। हमें ये नहीं सोचना है कि मैं पेड़ लगाऊंगा, हमें ये कि मैं पेड़ लगा चुका हूँ और उसकी मैं केयर कर रहा हूँ। हमें इस जगह शिफ्ट करना है, हमें बच्चों से प्रैक्टिकल कराना है कि बच्चों से एक पौधा लगवाइए, उनको बोलिए आप इस पौधे की केयर कीजिए, क्योंकि लाइक पौधा ऐसा चीज है, प्लांट एंड ट्रीज आर द थिंग्स लाइक वो बहुत ही वैल्यूएबल है। हमें मतलब उनको अच्छे से बच्चों को ये चीज सिखानी है, तो हमें प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि उसी से आई थिंक ज्यादा लोगों के अंदर और जागरूकता आएगी। आप जैसे बच्चे जा रहे हैं फैन ऑन करके चले गए, तो आप उनको सिखाइए नहीं आप फैन बंद कीजिए, सेव इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीजें रहती है, छोटी छोटी चीजें जो हमें किड्स को स्पेशली सिखानी चाहिए। और बचपन से जैसे हम इन्हें प्रैक्टिकल कराएंगे इस चीजों का, तो आई थिंक उनके अंदर ज्यादा इस चीजों के बारे में वैल्यू आएगी, और जब बड़े होंगे वो और पढ़ेंगे इस बारे में आगे क्लासेस में, तो वो चीजें जब बचपन से भी वो कर रहे होंगे तो उनको एक्चुअल मीनिंग तब पता चलेगा कि ओके हमारे पेरेंट्स हमें छोटे से क्यों बोलते थे कि वी शुड सेव इलेक्ट्रिसिटी, सो व्हेन दे विल रीड अबाउट इट तो तब वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। इसलिए हमें बचपन से ही बच्चों को नेचर से कनेक्ट करके रखना चाहिए। लाइक माई पेरेंट्स हैव ऑलवेज कनेक्टेड मी विद नेचर, वो हमेशा से मुझे बचपन से मुझे सिखाते थे कि नहीं बेटा पानी बचाइए, आप नल बंद कीजिए, हमेशा आप घर से निकल रहे हैं बाहर के लाइट ऑल एवरीथिंग ऑफ करके चलिए, प्लांट है बेटा, वो मुझसे पानी बचपन में डलवाते थे कि नहीं आप प्लांट्स में पानी डालिए, आप कनेक्ट कीजिए नेचर से। आई थिंक चिल्ड्रंस को प्रैक्टिकल के थ्रू नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, और चिल्ड्रंस को ही नहीं सबको प्रैक्टिकल करके नेचर से कनेक्ट होना चाहिए।
0: बहुत ही कीमती जानकारी और बहुत ही अच्छी बात बताई है आपने हम सबके लिए। इसके अलावा जो मेरा एक और सवाल है आपसे वो ये है कि जो स्कूल्स और जो कॉलेजेस हैं, इनका क्या कर्तव्य होना चाहिए पर्यावरण की जागरूकता फैलाने में और इसमें युवाओं को मोटिवेट करने में?
2: जी देखिए, स्कूल एंड कॉलेजेस तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि पूरे यूथ और स्टूडेंट्स एंड टीचर्स सब एक साथ होते हैं, तो प्रोबेबली वो ऐसी प्लेस है कि जैसे अगर टीचर आपको जो बताता है स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स उसको ग्रैप करते हैं और ज्यादा से ज्यादा वो सीखते हैं। तो यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स का तो बहुत ही मेजर रोल है, उनको भी लाइक टाइम टू टाइम बच्चों को उनके प्रैक्टिकल्स कराना चाहिए। स्कूल कैंपसेस बड़े होते हैं, वहां पे प्लांट्स लगा के उनको बोलना चाहिए कि आप अपने पौधे का केयर कीजिए, क्योंकि बच्चा डेली स्कूल आता है, अब वो अपना एक प्लांट लगाएगा, वो उसको डेली वाटर कर सकता है, तो वो डेली का एक प्रैक्टिकल, वो तो बहुत ही अच्छा प्लेस है जहाँ बच्चे और अच्छे से सीख सकते हैं। एंड लाइक वो तो इतना कॉम्पिटिशन कराए ताकि लोग और पर्यावरण के बारे में जाने, जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन हम करा सकते हैं स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज, अगर फिर प्लेस होते हैं जिसके थ्रू वीडियोज एंड प्लेस के थ्रू भी लोगों को हम पर्यावरण के से कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्कूल्स एंड

0: कॉलेजेस तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उन्हें प्रोबेबली स्टूडेंट्स से प्रैक्टिकल्स कराना चाहिए और अपने कैंपस को भी इतना अच्छा ग्रीन एंड ऑल रखना चाहिए कि लोगों को देख के इतना सुकून मिले. तो वो चीजें और ज्यादा कनेक्ट करते हैं जब आप देखते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं, तो एज आई सेड तो वो चीजें ज्यादा वर्क करेंगी. तो यूनिवर्सिटी एंड स्कूल को तो कॉम्पिटिशन कराने चाहिए एंड वो खुद इस चीज में सजग रहेंगे तो आगे और अच्छा कर पाएंगे.
1: शुक्रिया नंदिनी जी.
2: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार.
3: अपने रेडियो अपनी बातें साथी हरो भैया हरो, अपन अभय सुन रहे हते नंदिनी दीक्षित जी को जिनने पर्यावरण को लेके बहुत अच्छो काम करो है गो. अब हमारे साथी जो है तनक सोच में भी हुए के पर्यावरण से जुड़ी हुई बातचीत तो अपन शुभ कल कार्यक्रम में करत रहेंगे, लेकिन आज हम होंगे कामयाब है भी शुभ कल. तो भैया ऐसा नहीं है, देखो शुभ कल को हमने कही थी कि अपन को ध्यान रखने है गो और हर एक चीज में अपन को शुभ कल देखने है गो. सो नंदिनी दीक्षित जी जो हैंगी वे एक सफल महिला हैंगी, यानी कि उनने जो काम की वो नींव रखी हती उनमें भी सफल भई हैंगी, यानी पर्यावरण से जुड़ो जो कार्य भी कर रही हती उनमें भी सफल भई हैंगी. यही से अपन को लगो के हम होंगे कामयाब में. आज के दिन अपन जो सफल कहानी लेके आतेंगे तो कायना वा पर्यावरण से जुड़ी भी कहानी आप सबको सुनो आवे.
4: और वर्षा हमें भी लगा थे गो के नंदिनी दीक्षित जैसी ऐसी हमारी जो सफल महिलाएं जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लाने बहुत ही नोनो काम करो है गो. और हमें एक बात और कहने वाले हैंगे कि पर्यावरण के लाने तुमने भी बहुत अच्छा काम करो, तो हम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देवो चाहते हैंगे. और अपने कुछ अनुभव पर्यावरण से जुड़े जरूर साझा करो, कैसे हम वो और आप सफल कहानी के माध्यम से तो जानते ही हैंगे. वर्षा के बारे में सब लोग ने जानत हैंगे कि वर्षा रेडियो बुंदेलखंड में काम करत हैंगी, लेकिन पर्यावरण के लाने विशेष तौर पर अब एक महीना में इन्हों पुरस्कृत करो गो तो, और विशेष तौर पर इन्हों बुलाओ गो तो कि आप बुंदेलखंड के क्षेत्र में आपने जो सोगहन में मिलके पर्यावरण के लाने जो मुहिम छेड़ी हैगी और पर्यावरण के लाने तरह तरह के कार्यक्रम बनाए हैं, खासतौर पर रेडियो से बनाए जो कार्यक्रम और नैरोकास्टिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक करो, तो कछु अपने श्रोता साथियों को पर्यावरण बचावे के लाने कछु संदेश, पर्यावरण संरक्षित के लाने को संदेश आप भी दो.
3: सबसे पहले तो मनीष भैया हम आपको बता देवे कि जो काम की जन तारीफ आप पुल बांधवे जा रहे हैंगे वो काम को बरसा ने अकेले नहीं करो है गो, हमारी पूरी टीम जैसे कि मनीष भैया हैंगे, माता दीन भैया हैंगे, अपने जगरूप भैया भी हते, उनने भी प्राची रामपाल अभी तक के जितने भी रेडियो के साथी काम करत हते सबने मिलके काम करो है गो. सो ये तारीफ के हकदार अपनो पूरो रेडियो बुंदेलखंड को स्टाफ है गो. सो अनुभव के लाने अगर मनीष भैया आपने बात छेड़ी हैगी तो आपको बता देवे कि शुभकल कार्यक्रम अपन और 2013 से लगातार अपने साथियों के बीच में चला रहेंगे और समय के अनुसार जो समय की मांग होते ही उन सब चीजन को अपने साथियों के बीच में अपन प्रसारण करेंगे. जैसे अगर हमारे कोनू किसान साथी पूछत हेंगे अपन से कि अगर पर्यावरण को सही रखने है गो तो उके लाने अपन और कौन सी बीजन को चयन करवे, कौन सी खाद को उपयोग करवे, तो बस इन्हीं के बारे में अपन और ने जागरूकता बढ़ाई हैगी. काम करवे की तो अपन बात नहीं कह सकत, लेकिन अपन ने जागरूकता बढ़ाई हैगी इन गांवन में. सो जी की वजह से लोग समझ गए हैंगे और आप खुद से काम करवो उनने शुरू कर दो है गो. तो सफलता जो मिली हैगी वह रेडियो बुंदेलखंड को मिली हैगी.
4: बिल्कुल, और संगे संगे आप भी उसके पात्र हकदार होगी. कैसे यूएन क्लाइमेट चेंज यंग लीडर में आपको सिलेक्शन भी बहुत हो, और आपको बता दें वो चाहे जाके बाद सिलसिला रुको नहीं है और एक के बाद एक उपलब्धियां हासिल करके आज हम और आप देख रहे हैं कि पूरे पेपरों में क्लाइमेट चेंज को लेकर अपने बुंदेलखंड क्षेत्र से श्री बरसा का चयन किया गया था. और बड़े गौरवान्वित की बात है कि इस तरह की कुछ उपलब्धियां रेडियो बुंदेलखंड को प्राप्त भई हैंगी, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करत हैंगे आप लोगों को स्नेह जो मिले होगो. और खास तौर पर रेडियो बुंदेलखंड की इतनी चर्चा खास तौर पर पूरी देश में सुनाई जा रही हैगी कि रेडियो बुंदेलखंड द्वारा कितनो अच्छो काम करो जा रहा है गो, तो बहुत बहुत धन्यवाद. अगर साथियों आपको वर्षा की पूरी कहानी आपको सुनने हैगी तो आप फोन कर सकत हैंगे. और अगर सबसे ज्यादा जन के मतलब फोन आ गए हैं कि वर्षा की पूरी कहानी अभी तक को सफर आपको सुनने हैं तो कॉल कर सकते हैं, नंबर वही है वो हमारा
5: 92 19 20 77 49.
3: बहुत बढ़िया मनीष भज्जा, आपने तो एना ही नोनी बात बता दी हैगी। और बरसा की कहानी इतने अपन सफल कहानी सुन रहे थे और सफल कहानी में अपन ने आज बरसा की कहानी पे ज्यादा फोकस कर लो है को। सो इन सब चीजन पे आपको ध्यान नहीं देने हैं, बस केवल मनीष भैया को उद्देश्य जो है तो वो जो है तो के रेडियो बुंदेलखंड को एक सफलता आज मिल गई है कि बड़ा अच्छा लग रहा है। और इन सबको श्रेय जो है वो अपनी टीम को तो जाता ही है लेकिन संग में अपने श्रोता साथियों को भी जाते हैं, क्योंकि जो भी चीजें अपन इतने ब्रॉडकास्ट कर रहे थे अगर अपने साथी भैया सुन के उम्र बदलाव नहीं करेंगे तो अपन और सफल नहीं हो पाएंगे। तो हम साथियों से भी यही अपेक्षा कर रहे थे कि भैया आगे भी आपको साथ हमारे संगे ऐसे ही बनो रहे ताकि रेडियो बुंदेलखंड हमेशा ऊंचाइयों तक पहुंचत रहे। और देखो आप ज्यादा बतकाव नहीं करने है गो, काहे कि अपनो समय कार्यक्रम को इतनी समाप्त हुए जा रहा है गो। सो अपनी रेडियो दोस्त वर्षा
4: और मनीष को दो जावे की इजाजत,
3: फिर उज्जे आपसे मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लाने नमस्कार।
5: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल, वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए जीवन।

0: हेलो सहेली हेलो सहेली नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाली सभी सखियों को हम यानी कि वर्षा दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं और साथ में हमारे सखियों को बता देना चाहते हैं कि हम उनका पसंदीदा जो कार्यक्रम है हेलो सहेली वो लेकर आ गए हैं। और आप इस समय अपने अपने आसपास की जो भी बहनें हैं उनको भी बिठा लीजिए ताकि उनको भी पता चले कि आपकी आवाज जो है वो रेडियो पर आ रही है। और रेडियो पर आवाज अगर आ रही है आपकी पसंद का गीत भी आएगा। तो बिल्कुल सखियों आपको बता देना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में अगर आप शामिल होना चाहती हैं और अपने मनपसंद लोकगीत की फरमाइश करना चाहती हैं तो हमें शुक्रवार के दिन कॉल करें हमारे नंबर 94-25-14-17-26 पर। और कॉल करने के बाद आप अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवा सकती हैं जिसको आप शनिवार को सुन सकती हैं। तो आइए हमारे साथ कुछ सखियां हैं जिन्होंने अपनी फरमाइश करी है और सुनते हैं उनकी मनपसंद फरमाइश को। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, को बोल रही?
1: पार्वती वंश का सजनपुरा से।
0: बिल्कुल पार्वती जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। बताओ का क्या बचाती हो?
1: हम दीदी का हमें एक घोषणा

0: गीत।
1: हाँ कौन सा सुना दे?
0: देखो मैं खेल जा दू टी नगर जावा भाई दीवानी में बारी मर जावा संध्या सलगम
1: संध्या सलगम को है वो। हाँ बिल्कुल यानी नो नो हम जरूर सुनवा दें आपको। और बताओ पार्वती जी प्रोग्राम कैसे लग रहा है रेडियो के?
0: प्रोग्राम बहुत अच्छे लग रहा है दीदी।
1: तो ठीक है पार्वती जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपको जरूर सुनवा रहे हैं आपकी पसंद को जो लोकगीत। ठीक है
0: दीदी सुना।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: का नाम?
1: पान कुआ।
0: कितने से बोल रही?
1: मस्तापुर।
0: अच्छा पान कुआ जी, तो मस्तापुर में क्या हो रहा हो आजकल?
1: आज लोकगीत अपनी पसंद को सुना ली।
0: ठीक है, तो हम आपको जो सुनवा रहे हैं अपनी पसंद को लोकगीत। ठीक है।
1: हाँ।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो सहेली
1: को बोल रही
0: माँ देवी बोल रहा है मस्त पैसे
1: ठीक है तो आज बताओ कौन सा लोग किसने आपको
0: हमें तू मसाला है तुम मज्जा
1: अरे वाह क्या बात है तुम
0: पंचांगे तो रानो हाँ वही लोग सुनने में
1: बहुत बढ़िया तो हम आपको जरूर सुनवाए जो लोग ठीक है
0: नमस्कार।

सखियों, अभी आप सुन रही थी हमारी सखियों की मनपसंद फरमाइश को, और क्योंकि अब हमारा समय भी हो रहा है आज के इस कार्यक्रम से जाने का, तो हमारी जो सखियां इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाई हैं, अगर वो अगले कार्यक्रम में शामिल होना चाहती हैं, तो हमें जरूर कॉल करें हमारे नंबर 94-25-14-17-26 पर। जी हाँ सखियों, और आपको कॉल करना है शुक्रवार के दिन। तो हेलो सहेली कार्यक्रम से जाने की दीजिए अपनी दोस्त वर्षा को आज्ञा, फिर होगी आपसे मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप इबेरा अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। और दोस्तों, जैसे कार्यक्रम को समय भाव है सो हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम छिरिया बाड़ा। जी हाँ दोस्तों, सो साथियों, छिरिया बाड़ा कार्यक्रम में अपन बात करते हैं खेती किसानी के संगे संगे पशुपालन की। सो दोस्तों, आज अपन ई कार्यक्रम में पशुपालन की नस्लन को और पशुअन के पोषण पे उनके आहार पे अपन बातचीत करें। दोस्तों बात करें पशु आहार शब्द, जैसे कि नाम से ही पता चल जाता के पशु की बात हो रही है, और पशु आहार यानी कि पशुओं की 24 घंटे में दी जाने वाली आहार, ऐसा आहार जो पशुओं को आवश्यक पोषक तत्वों प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट खनिज लवण विटामिन युक्त का उच्च अनुपात और उचित मात्रा में दी जाने वाली आहार, जो पशु की बढ़वार स्वास्थ्य अधिक दुग्ध देने में उत्तम क्षमता बनाए रखें। सो दोस्तों, पशुओं के लाने अपने आहार पे आगे भी बात करें और उनकी नस्ल पे बात करें। सो ये बातन के संगे संगे आप पहला एक बढ़िया से गीत को सुन लेते फिर आगे कार्यक्रम में। जी गीत को गा रहे हैं रामाधीन आर और रेखा राजी।

0: लाओ मोए कंगना जैसी पेरे देवरानी। देखो कितनो बढ़िया जो गीत अपन सब जन ने सुनो है, गीत को आनंद लो है, गीत को गा रहे थे रामाधीन आर और रेखा राज्य। अब दोस्तों अपन चलते हैं अपने कार्यक्रम की ओर। तो दोस्तों आज के समय में पशुपालन एक बहुत अच्छी उभरता हुआ व्यवसाय है।
1: जी हाँ,
0: पशुपालन भी कृषि व्यवसाय की एक शाखा है जिसमें कई प्रकार के पशुओं को उनके दूध व अंडे व अन्य उत्पादों के लिए पाला जाता है। पशुपालन के लिए आपको पशुपालन की जानकारी होना अति आवश्यक है। यहाँ पर आप जानेंगे कुछ टिप्स जिसे आप पशुपालन जैसे कि भैंस मुर्गी भेड़ बकरी पालन आदि अच्छे से कर सके, अधिक मुनाफा कमा सके। सो दोस्तों अपन सबसे पहला अपने पशु की नस्ल को ध्यान से चुनें।
1: जी हाँ,
0: अगर अपन कोनो सो भी पशु पाल रहे तो उनकी सबसे पहला नस्ल को ध्यान में रखें। खास तौर पर भैंस और बकरी पालन के व्यवसाय में जहां आपको पशु का दुग्ध व मांस बेचकर मुनाफा होता है, आपको अपने पशु की नस्ल का चुनाव काफी ध्यान से करना चाहिए। हर नस्ल का पशु अच्छा एवं ज्यादा दूध नहीं दे सकता, इसलिए आप पशु की नस्ल चुनते समय सावधानी बरतें। सो अपने पशु को अच्छे पोषण वाला आहार ही दें। अगर आप भी पशुपालन व्यवसाय से जुड़ने का मन बना रहे हैं तो आपको यह बात समझनी चाहिए कि यदि आप अपने पशु को अच्छा चारा व दाना पानी देते हैं तो उससे न केवल उसकी सेहत अच्छी रहती है बल्कि पशु की उत्पादक क्षमता भी कई गुना बढ़ जाती है। पशुपालन करते समय आप अपने पशु को सही मात्रा में पोषण वाला आहार ही खिलाएं, जिससे आपके पशु का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपको मुनाफा भी अधिक प्राप्त होगा। अब दोस्तों बात आती है कि अपने पशु का आवास स्वच्छ रखें।
1: जी हाँ,
0: अपने पशु का जो आवास है उसे साफ और स्वच्छ रखें। पशु का आवास जितना अधिक स्वच्छ होगा उतना ही आपके पशु को बीमारी का खतरा कम रहता है। पशुओं को नियमित रूप से नहलाएं और उनके आवास के लिए किसी ऊंची जगह का चयन करें जिससे बारिश एवं नालियों का पानी मलमूत्र इत्यादि से वह बाहर रह सके। आपके पशु के आवास में कम से कम 2 से 3 जगह से अच्छी धूप आनी चाहिए। आवास में धूप के आने से न केवल वहां के कीटाणु मरते हैं बल्कि आपके पशु का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। पशु के लिए पानी की सुविधा। पशु आवास में पशु के लिए पानी एवं खाने की उपलब्धता का भी ध्यान रखें। डेयरी के कामों में वैसे भी पानी की काफी जरूरत होती है और खास तौर पर गर्मी के मौसम में आपको पशु के लिए पानी उचित मात्रा में जरूर रखना चाहिए। पशु के स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखें। पशु पालन में अपने पशु के स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पशु पालन में सबसे जरूरी बात यह होती है कि आप अपने पशु को सही समय आने पर उसे सभी आवश्यक टीके लगवाएं, उसको लू लगने से बचाएं, चारा पर्याप्त मात्रा में दें ताकि उसका स्वास्थ्य ठीक बना रहे। पशु की नियमित रूप से डॉक्टरों से जांच कराते रहें। अगर आप

आपका पशु कभी बीमार होता है या आपको वह कुछ सुस्त दिखाई देता है तो तुरंत उसे जानवरों के डॉक्टर को दिखाएं। ऐसा हो सकता है कि उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो। कभी भी जानवर के बीमार होने पर खुद उसका इलाज करने की कोशिश ना करें, यह आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। अपने पशु को अच्छा मुनाफा होने पर ही बेचें। अपने पशु को बेचने के लिए सही समय आने का इंतजार करें। अच्छी नस्ल वाले पशु को सही समय आने पर काफ़ी अच्छे दामों में बेचा जा सकता है। जैसे कि अगर आप बकरी पालन करते हैं तो बकरी ईद के समय पर अपनी बकरी को अच्छे मुनाफे पर भी बेच सकते हैं। पशु उत्पादों में मिलावट ना करें। अगर आप बाजार में पशु का दूध बेचना चाहते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा हो सकता है, पर अगर आप अपने पशु उत्पाद में पानी या किसी और चीज़ की मिलावट करेंगे तो वह आपके व्यवसाय के लिए हानिकारक हो सकता है। पशु उत्पाद में मिलावट करने से आपका मुनाफा तो बढ़ जाता है, लेकिन मिलावट करने पर आपके ग्राहक आपके उत्पाद को नापसंद करने लगते हैं व आपके खिलाफ शिकायत भी हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अगर आप सघन पशुपालन या आश पशुपालन करना चाहते हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का भी उचित ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आप जानवरों से होने वाले रोगों के शिकार बन सकते हैं। टीबी जैसे रोगों से एक उदाहरण है। जानवरों के मल में पैदा होने वाले बैक्टीरिया और उनमें बैठने वाली मक्खियां आपको बहुत बीमार कर सकती हैं। पशुपालन की सरकारी सेवाओं का भी लाभ उठाएं। सरकार की तरफ से कृषि उद्धार के लिए किसान हेल्पलाइन जैसी कई सेवाएं शुरू की गई हैं। आप इन सेवाओं का लाभ अपनी भाषा में मुफ्त उठा सकते हैं। यह सुविधा 24 घंटा सातों दिन चालू रहती है। तो कभी अगर आपको पशुपालन से संबंधित कोई भी परेशानी होती है तो देर किए बिना किसान हेल्पलाइन पर आप कॉल कर सकते हैं। किसान हेल्पलाइन नंबर है 1551 या 1800। सो देखो दोस्तों, जहाँ अपन ने पशुपालन से संबंधित जानकारी जानी है, अब एक क्रम में अपन एक गीत को सुनत और गीत को आनंद ले। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। आओ दोस्तों सुनत ही गीत को जिया गा रहे हैं राजकुमार त्यागी जी और अमूल अहरवाल जी।

बिल्कुल दोस्तों, जो 3 दिना को मिला री उड़जे है हंस अकेला। देखो कितना अच्छा जो गीत अपन सब जन ने सुनो, गीत को आनंद लो। ये गीत खुंगा रहते अमूल अहरवाल जी और राजकुमार त्यागी जी। अब दोस्तों आज के ये कार्यक्रम छिड़कियावाड़ा से आपके दोस्त मातादिन भैया को जाबे को समय हो गए है, सो हमें दो ये कार्यक्रम से जाबे की अनुमति। अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात ये कार्यक्रम में ए बेरा पे, जब तक के लाने नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप इबीरा अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। बुंदेली कार्यक्रम में आज सुने अपन बढ़िया बढ़िया सी गारियन को, और इन गारियन को अपन आनंद ले हैं। जी हाँ दोस्तों, काय के जब ब्याह शादियन को मौसम आ जाता, और ऐसे मौसम पे महिलाएं जब गारी गाती हैं तो देखो कितनो सुहानो लगत मड़वा की तरह। और जब मड़वा की तरह गारी हो तो अपने गांव पूरा मोहल्ला के लोग बाग सुनत हैं, और वो गारी विधा में जो चीज दर्शाई जात गाई जात बा कितनी सुहानी लगत। सो दोस्तों, आज आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में, और सुनत रहो जो कार्यक्रम राग बुंदेली खो। सो आओ दोस्तों, देर ना करत भय सुनत हैं बढ़िया सी प्यारी सी गारी खो, और लेते हैं इको आनंद।

बिल्कुल दोस्तों, घर होती आदर कर लेती। देखो कितनी प्यारी जा गारी अपन सब जन ने सुनी है, ई गारी को आनंद लो। ई गारी खूं गा रहे थे हर प्रसाद कुशवाहा जी और उनके संगी साथी। सो दोस्तों, आप एक क्रम में सुनते हैं अगले साथी इनकी गारी खूं।

देखो दोस्तों, जब कितनी बढ़िया गाड़ी अपन सब जन ने सुनी है, ई गाड़ी को आनंद लो है। और दोस्तों ई गीत को गा रहे थे प्रताप सिंह यादव जी और संगे गा रही थी रेखा शर्मा जी। अब दोस्तों आओ एक क्रम में सुनते हैं अगले साथियों की गाई भाई गारियन को। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में।

बिल्कुल, बिटिया दइयो तो धन दइयो, राम गरीबी ऐसी दइयो ना। देखो दोस्तों, कितनों प्यारी जा अपन ने गारी सुनी, ई गारी को आनंद लाओ है। ई गारी खूं गा रही थी उमा प्रजापति जी। अब दोस्तों यही गारी के संगे संगे आओ सुन लेते हैं अगले साथी की और गाई भाई गारियन खूं। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में, और सुनत रहो जो कार्यक्रम राग बुंदेली।

खबर ना पाई हो सजना कब के आए। देखो कितनी प्यारी जा गारी अपन सब जनन ने सुनी है, इको आनंद लव है। ई गारी खो गारी हती सुशीला देवी जी। अब आओ दोस्तों एक क्रम में फिर से सुनते हैं अगले साथियों की गाई भाई गारियन खो।

बिल्कुल, तुम बड़े प्रेम से आइयो समधी हमें भूल ना जइयो। देखो कितनी प्यारी जा गारी अपन सब जन ने सुनी है, ई गारी को आनंद लो है। ई गारी को गा रहे थे भैया गंगाराम कुशवाहा जी। अब दोस्तों गंगाराम भैया जी की गारी के बाद हम आप सब जन को जो बता देवे कि आज के ई कार्यक्रम विधा बुंदेली से अपने दोस्त माता दीन भैया को जाबे को समय हो गए है। सो हमें दो ई कार्यक्रम से जाबे की अनुमति, अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात ई कार्यक्रम में यही बेरा पे। जब तक के लाने नमस्कार।

अब करो भरोसो हार पे, अब करो भरोसो हार पे, करो भरोसो हार पे, ना करियो अपने

जन्म लो सो जाने राजा रंक सबई के लाने उते न चल है एक बहाने दीने जन्म लो सो जाने राजा रंक सबई के लाने।

नहीं जात वह हाट बाजार, नहीं जात है मेला, वही जात है हाट बाजार, वही जात है हाट बाजार।

अभिमान करो ना प्यारे, मद अभिमान करो ना प्यारे, बांधो ना पाप गठिया में।

नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पर आ गई है आप सबकी दोस्त वर्षा लेकर आपके लिए एक नया कार्यक्रम जिसका नाम है गली गली सिम सिम, जो है आपके लिए खास। जैसे आसमान का सितारा धरती पे उतारा, फिर उसने आकर खोला अपना जादू का पिटारा, जिसमें है ढेर सारी जानकारी और मस्ती। तो सुनते हैं लेकर चटकारा गली गली सिम।

0: यार बड़ी भूख लगी है, जरा देखो तो आज क्या है किचन में। ये क्या, फिर से वही गोभी और वही आलू। भाई आलू गोभी खा खा के मेरे दांत भी थक गए हैं। कुछ नया भी तो होना चाहिए, रोज रोज कुछ नया नहीं खाऊंगा तो मुँह का स्वाद कैसे बदलेगा। अरे हाँ, खाने से याद आया, आज ना गली में एक नाटक होने जा रहा है जिसमें अपना गुगली बना है राजा और चमकी बनी है मंत्री। ओ जी, नाटक शुरू होने जा रहा है, जल्दी जल्दी सब अपनी जगह पर बैठ जाओ। आज महाराज गुगली के दरबार में एक नए मंत्री आए हैं।
1: महाराज गुगली की जय।
2: हमें भूख लगी है, हमारे नए मंत्री के स्वागत में पूरे दरबार को खास शाही पकवान परोसा जाए।
1: पेश है शाही पकवान।
2: मेरा मन पसंद शाही पकवान।

0: शाही पकवान, रोज रोज शाही पकवान, बोर हुए हम खाते खाते रोज यही शाही पकवान।
1: कुछ करिए मंत्री जंकी।
2: क्या हर रोज यही पकवान बनता है? लगता है शाही रसोइये से बात करनी पड़ेगी। नमस्ते शाही रसोइये।
3: अरे मंत्री चमकी, आप
2: बताओ रसोइये, कल दरबार के लिए खाने में क्या बनाओगे?
3: शाही पकवान, और क्या, रोज वही बनाओ वही खाओ। मैं तो शाही पकवान से बोर हो गया हूँ। मुझे सपने आते हैं नई नई सब्जियों के, भिंडी के, गाजर के, रसीले लाल टमाटर के।
2: लेकिन तुम हर दिन कुछ नया क्यों नहीं बनाते?
3: मंत्री चमकी जी, हमारे महाराज कुगली रोज शाही पकवान ही खाते हैं और साथ में हमें भी खिलाते हैं।
2: अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
4: वैसे बात तो सही है, अगर कोई नया नया खाना ट्राई नहीं करेगा तो उसकी सेहत कैसे बनेगी? मुझे ही देख लो, लंबा चौड़ा तगड़ा हूँ, बिल्कुल सलमान की तरह। और फिर अगले दिन दरबार में
0: महाराज कुगली की जय।
4: हमें भूख लगी है, शाही पकवान लाओ।
3: ये लीजिए महाराज।
4: अरे वाह, आज तो हमारे शाही पकवान से कुछ ज्यादा ही अच्छी खुशबू आ रही है। लाओ मेरे पास लाओ शाही रसोइये।
3: जी महाराज।
4: ये मेरा शाही पकवान नहीं है, तुमने नया पकवान बनाया।
3: जी महाराज।
4: तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
2: गुस्सा मत कीजिए महाराज, आप टेस्ट तो करके देखिए।
0: महाराज ने चम्मच को उठाया, पूरे दरबार में सन्नाटा छाया।
4: भाई वाह,
1: महाराज को नया पकवान पसंद आया।
4: मैं करता हूँ ये ऐलान, अब राज्य में रोज बनेंगे तरह तरह के पकवान।
0: महाराज गुगली की जय हो, मंत्री चमकी की जय हो।
4: ओए बल्ले बल्ले, गुगली महाराज खुश और राज्य के सब लोग भी खुश। रोज नया खाओ, पौष्टिक खाओ और अपनी सेहत बनाओ। सब लोग इतने खुश थे कि हमने तो गाना ही सुना दिया।

0: मजा आ गया। अब सब बच्चों की मम्मी और डैडी को मैं एक राज की बात बताता हूँ। अगर कभी आपके चुन्नू मुन्नू बोलू मुन्नू नई नई चीजें खाने से मना कर दे तो मैं आपको एक तरकीब बताऊं। कोई बात नहीं, थैंक यू, बाद में बोल लेना। तो सुनिए, आप सब अपने बच्चों के साथ मिलकर खाना बनाएं और फिर देखिए कि उन्हें अलग अलग चीजें खिलाना आसान हो जाएगा। जैसे कि मेरी दोस्त पल्लवी और उसकी मम्मी मिलकर कुछ बना रहे हैं।
1: सब्जियों और फलों में मुझे सबसे ज्यादा पसंद है आम। आम फलों का राजा है। मेरा नाम पल्लवी। सबसे अच्छे आम गर्मी

0: की तरह खाया जा सकता है। और आज मैं, मम्मी और शिरीन मिलकर स्वादिष्ट भेलपूरी बनाएंगे। वो बनेगी खट्टी मीठी अम्बी से, मतलब कच्चा आम। गर्मी में ये चटपटी भेलपूरी कितनी ताजगी भरी होती है। अब हम भेलपूरी में कुछ सब्जियां और मसाले डालेंगे। तीखा प्याज, लाल लाल टमाटर, हरा धनिया, मिर्च। बड़ा मजा आ रहा है। भेलपूरी में हम मुरमुरे जरूर डालते हैं और फिर मिला देते हैं सभी सामान। बन गई चटपटी भेलपूरी। अब आएगा मजा। हम सब साथ मिलकर खाएंगे चटपटी भेलपूरी।
1: कितने बढ़िया तरीके से पल्लवी और उसकी मम्मी ने साथ में भेलपूरी बनाई। भाई वाह, अब मैं तैयार हूँ चमकी और गुगली के साथ एक गेम खेलने के लिए। चलो चलकर देखते हैं ये दोनों क्या खेल रहे हैं।
2: गुगली, मैं तुमसे एक पहेली पूछूंगी और एक आवाज भी सुनाऊंगी। तुम्हें आवाज सुनकर उस खाने की चीज का नाम बताना है। तो तैयार?
3: तैयार।
2: तो सुनो पहेली। उगती है जमीन के नीचे लंबी पतली सब्जी लाल, इसको अगर दांत से काटो तो आती है ये आवाज। बताओ गोगी, मैं कौन सी सब्जी के बारे में बात कर रही हूँ?
3: उगती है जमीन के नीचे लंबी पतली सब्जी लाल।
2: हाँ, एक बार फिर से आवाज सुनो।
3: लाल सब्जी जिसको खाने से ऐसी करारी आवाज आती है। समझ गया, ये है गाजर।
2: बिल्कुल सही, गाजर, जिसको इंग्लिश में कैरेट भी कहते हैं। गुगी गुगी, ये तो बहुत मजेदार गेम है। चलो अब हम ये गेम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं। क्यों, खेलोगे ना तुम मेरे साथ? हुँ?
3: तो हो जाओ तैयार। चलो चमकी, पहला सवाल तुम पूछो।
2: ठीक है, सुनो दोस्तों। रंग में मैं सफेद हूँ, पीने की चीज हूँ, रोज पिया मुझे तो बनोगी तंदुरुस्त और बलवान। आवाज सुनो और बताओ क्या है मेरा नाम।
3: रुको रुको, सोचने दो। रंग में मैं सफेद हूँ, पीने की चीज हूँ, रोज पिया मुझे तो बनोगे तंदुरुस्त और बलवान। आ गया समझ। चमकी मैं बताऊं?
2: अरे गुगी अभी रुको, बाकी सबको सोचने का मौका दे दो। क्यों दोस्तों, क्या तुम्हें पता चला? एक बार फिर से सुनोगे आवाज?
3: चमकी अब तो जवाब बताने दो।
2: अच्छा अच्छा, बताओ क्या है जवाब।
3: दूध, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं मिल्क।
2: एकदम सही, क्या तुमने भी दूध कहा? बहुत बढ़िया,
1: मजा आया ना। अब यार ये बताओ, इसको छिलो तो कोई आवाज नहीं आती, इसको खाओ तो भी कोई आवाज नहीं आती, पर इसके छिलके पे जब कोई फिसलता है तो बड़ी जोर की आवाज आती है। जी क्या बोला? केला यानी बनाना। ओए सही जवाब। यार आज खाने के बारे में कितना कुछ सीखा हम सब ने। हर तरह का खाना खाओ और सेहत बनाओ। अब वक्त है मिलने का हमारी प्यारी नटखट चुलबुली चमकी से। सुनते हैं कि आज चमकी कौन सी मजेदार बातें कर रही है अपने दोस्तों से।
4: कल हमारी गली में पिकनिक थी, सब लोग अपने घर से अलग अलग चीजें बना के लाए थे। पता है बुम्बा ने बोला ये सब पौष्टिक खाना है, मगर सब इतनी ढेर सारी सब्जियाँ क्यों खाते हैं? मैं बात में पूछती हूँ। हाय, मेरा नाम है चमकी और आप?
5: अब्दुल रहमान।
4: अब्दुल रहमान जी, पौष्टिक खाना क्या होता है?
5: जैसा कि नाम से ही मालूम है कि पौष्टिक खाना बच्चों को देने से

0: उनकी हड्डियों में मजबूती पैदा होती है, उनका दिमाग बहुत अच्छी तरह काम करता है, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाता है, उनका पढ़ाई में रुचि होती है, खेलने में भी रुचि होती है। पौष्टिक खाना जीवन में तरक्की करने के लिए निहायत जरूरी है।
1: आपके गांव में कौन कौन सी पौष्टिक सब्जियां उगती हैं?
0: पालक है, टिंडा है और बहुत सारी सब्जियां जैसे लौकी है।
1: मुझे भी पौष्टिक खाना खाना चाहिए ताकि मैं और स्ट्रांग बन जाऊं, मगर मुझे ना कुछ कुछ हरी सब्जियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्या करूं? हाँ, गुड़गांव में अपनी दोस्त से पूछती हूँ।
2: मेरा नाम शांति है।
1: शांति, सुमित और उसके भाई बहनों को कौन सी सब्जियां अच्छी नहीं लगती?
2: वो तो बस आलू की ही सब्जी पसंद करती है और कुछ भी नहीं खाना चाहती है।
1: हाँ, सिर्फ आलू? हाँ, फिर शांति तुम उन्हें कैसे खिलाती हो?
2: उन्हें कहती हूँ कि बेटे खा लो, थोड़ा भी खाना चाहिए, ताकत की चीज है हरी सब्जी खाने से, मगर खाती नहीं है उन लोग।
1: अरे, मेरे गुड़गांव के दोस्त तो कोई भी सब्जी नहीं खाते। बुंदेलखंड में पूछती हूँ। हाय, आपका नाम क्या है?
3: हमारा नाम है लक्ष्मी बाई।
1: आप अपने घर पे कौन कौन से पौष्टिक खाना बनाते हो?
3: दाल बनती, चावल बनते, पालक की भाजी बनती, मूली का साग बनता, सरसों का साग बनता, मेथी का बनता, चनों का भी बनता, सब बना के ये बच्चों को देते हैं।
1: अरे वाह, बुंदेलखंड में मेरे दोस्त तो सारी पौष्टिक सब्जियां खाते हैं। एक और दोस्त से भी पूछती हूँ। हाय वैष्णवी, ऐसी कौन सी सब्जी है जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती?
4: पालक।
1: ओ, फिर तुम पालक कैसे खाती हो?
4: जब मम्मी अपने हाथ से खिलाती है।
1: हाँ, मुझे भी तो बहुत अच्छा लगता है। शारदा, आप वैष्णवी को पालक और पौष्टिक सब्जियां कैसे खिलाती है?
5: मैं वैष्णवी को पालक कहानियां सुना के खिलाती हूँ।
1: ये अच्छा तरीका है, मैं भी कहानी सुनकर सारी सब्जियां खाऊंगी। मुझे तो भूख लग रही है। चलो सुने कि पौष्टिक सब्जियों को और स्वादिष्ट कैसे बना सकते हैं।
3: मैं करेला बनाती हूँ तो उसको छील के और अपने कढ़ाई में रख देती हूँ। तेल डालूं 2 चम्मच, फ्राई करी लाल हो गए इनको निकाल के रख देती हूँ। फिर 1 चम्मच दालचीनी, जीरा का को गरम मसाला और अजवाइन है, मेथी है, सब हम लोग पीस के उसको मसाला अच्छा बना के उसको फ्राई करके बच्चों को फिर खिलाते हैं।
1: अब मैं सब कुछ खाऊंगी, तुम भी सब सब्जियां खाना, ठीक है दोस्तों? ओके, बाय
6: बाय। मजा आया ना दोस्तों।

0: तो दोस्तों मजा आया ना आज का हमारा जो एपिसोड था यानी के गुगली महाराजा। वही बात, क्या बात है, गुगली महाराजा की तो बात ही अलग है। और फिर हमारे कार्यक्रम में जो कितनी अच्छी अच्छी बातें करी गई है भाई, हरी सब्जी क्या होती है, हरी सब्जी हरी सब्जी। मुझे तो उसका कलर ही बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है कि हरी सब्जी का जो रंग होता है यानी कि ग्रीन, और ग्रीन रंग तो सभी को पसंद होता है। जैसे तो इस पर पेड़ भी कितने हरे हरे हैं, तो वो हमें कितने सुंदर लगते हैं। और जब पेड़ सुंदर लगते हैं तो उसी तरह सब्जियां भी सुंदर लगती हैं। और जब सुंदर सुंदर चीजें हम खाएंगे तो हम सुंदर सुंदर बन जाएंगे। अब इस बात पर हमारे साथ में मौजूद है पजनपुरा की गीता जी, तो आइए वो क्या कहती है इस बारे में।
1: नमस्कार, मेरा नाम वर्षा है, आपका नाम क्या है?
2: नमस्कार, मेरा नाम गीता है
1: जी। तो गीता जी, जैसे कि अभी देख रहे हैं कि हरी सब्जियों के बारे में बहुत झगड़ा होता है कि बच्चे हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, तो क्या कारण हो सकता है कि बच्चे हरी सब्जियां क्यों नहीं खाते हैं?
2: उनका कारण एक ही है कि वो हरी सब्जी पसंद नहीं करते, इसीलिए उनको अलग तरीके से हम खिला सकते हैं बच्चों, क्योंकि हरी सब्जी यहाँ तक कि बड़े भी नहीं खाते
1: जी। तो इनका मतलब हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि कोई ऐसा उपाय है जिस तरीके से हम उनको हरी सब्जियां खिला सकते हैं?
2: हाँ, ऐसा दूसरा तरीका भी है, जैसे कि हम हरी सब्जी है जैसे लौकी है, तो उसका हम कोफ्ता बना दें तो बच्चे पसंद कर लेंगे खाने के लिए। और दूसरी तरह जैसे पालक है, तो पालक भी नहीं खाते, तो उनको मतलब पालक पनीर जैसा पनीर मिला के बनाए तो वो पसंद कर लेंगे, कि आलू में बनाए तो पसंद कर लेंगे। ज्यादातर बच्चे आलू ही पसंद करते हैं, इसलिए आलू में हम मिक्स करके बना सकते हैं, या पनीर पनीर से

0: पालक पनीर ही बनती है ना, तो वो वैसे ही बना सकते हैं, तो बच्चे पसंद कर लेते हैं।
1: अच्छा, और क्या क्या वजह है जिनसे बच्चे नहीं खाते हैं? मतलब बच्चों को खाने में अक्सर क्या पसंद होता है?
0: बच्चों को खाने में अक्सर पसंद होता है कि उनको चटपटी सब्जी मिले, और हरी सब्जी तो वो बिल्कुल पसंद ही नहीं करते, जैसे कि आलू हुए, छोले हुए, और दाल, मतलब ये दाल चावल तो वो खाते ही है, और बल्कि हरी सब्जी बहुत ही कम खाते हैं, इसलिए हमें अलग तरीके से उनको बना के हरी सब्जी, क्योंकि पौष्टिक होती है तो उनको आहार मिलना चाहिए, तो इसलिए हमें दूसरे तरीके से बना के उनको खिलाना चाहिए।
1: जी, आपने बताया जैसे कि हरी सब्जी पौष्टिक होती है, तो किस तरह से हमारे शरीर को फायदा करती है, इसके बारे में थोड़ा बताएं।
0: हमारे शरीर को जो हरी सब्जियों से विटामिन मिलती है, तो फायदा ही तो होता है कि हरी सब्जियां ना खाएं, तो कि अगर हम बच्चों को खिलाएं ना, तो मतलब पौष्टिक के आहार कम ही हो सकती है, जैसे कि बड़े हों या छोटे बच्चे हों, तो हमें ज्यादा जरूरी है कि उनको हरी सब्जी खिलाना चाहिए, क्योंकि उनको आहार मिले,
1: जी
0: पौष्टिक आहार मिले, और इसके अलावा कि तो मतलब हमें नुकसान भी बता सकते हैं, इसलिए हमें हरी सब्जियां देख के खानी चाहिए।
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: श्रोताओं नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनई बारे हमारे सब साथियों को बहुत ही बहुत स्वागत हम करा देंगे। हम तो हैंगे भैया आपके संगे आपकी रेडियो दोस्त वर्षा, लेके हाजिर हैं आप सबके लाने कार्यक्रम हमारी संस्कृति हमारी विरासत। जी हाँ श्रोताओं, हमारी संस्कृति और हमारी विरासत जी दो ही चीजें अपने तय की बहुत ही ज्यादा मशहूर रहती हैंगी। और आप सब जने जानते हैं कि बुंदेलखंड की चर्चा हर जगह होतेगी, जब खूबसूरती की बात करी जाए या फिर विरासत की बात करी जाए या धरोहर की बात करी जाए। और ऐसे ही में अपन और क्या कर रहे थे एक कार्यक्रम के माध्यम से, जो अपने साथी केवल जिनने नाम सुनो है गो कि अरे फलानी जगह ऐसी जगह हैगी और उतर हमें जाने है गो और उतर के बारे में उन्हें कछु पतो नहीं है, तो अपन और कोशिश कर रहे थे कि एक कार्यक्रम के माध्यम से जो है उन्हें उस जगह को घुमा देवे। एक कथ है ना कि अपन सुन के और आंखें बंद करके अपन समझत के उस जगह पे पहुंच गए, और विस्तार से अगर कोई बता रहा हो के बारे में तो है कि नहीं। तो अपन ई कार्यक्रम से आज आपको ले चले थेगी चंदेरी। जी हाँ साथियों, आपने चंदेरी की साड़ियां तो बहुत सुनी हुई है, लेकिन चंदेरी को ऐतिहासिक का रहस्य है गो उके बारे में भी अपन और ई कार्यक्रम के माध्यम से जाना थेंगे। तो आप देर नहीं करे थेंगे, हम आपको ले चले थे सीधे चंदेरी, काहे के पहुंचवे में तना टाइम भी लगे होते, ठीक है। तो चलो अपन सैर करवे चले थेंगे और संस्कृति के बारे में जाना थेंगे चंदेरी की, और जी के बारे में विशेष पूरी जानकारी दे रहेंगे अपने रेडियो साथी जगरूप जी।
1: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार,

0: वृक्ष लगाइए जीवन बचाइए।
1: वीर सिंह यादव के स्वर में अभी हमने ये लोकगीत सुना, अपनो प्यारो बुंदेलखंड भारत माता को हृदय है। बिल्कुल मित्रों, ये गीत भी बिल्कुल बयां करता है हमारे इस बुंदेलखंड को। हमारा बुंदेलखंड, हमारा ये जो प्रदेश है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, तो हमारे भारत देश का एक मध्य स्थल है, हृदय क्षेत्र है। तो अब हम आगे बढ़ें और चलते हैं हृदय स्थली की एक ऐसी जगह पर जहाँ बहुत ही लोक लुभावन संस्कृति से परिपूर्ण और प्राकृतिक सौंदर्य निहारते ही बनता है। हम बात कर रहे हैं वही चंदेरी की, तो चलते हैं चंदेरी। श्रोताओं, आज हम आपको ले चलते हैं अपने बुंदेलखंड की, हालांकि ऐतिहासिक जो जानकारी आप सभी को हम अब तक पहुंचाते रहे हैं। आज प्रातः काल का वक्त है और चंदेरी जो कि ऐतिहासिक नगरी है, अपने आप में एक रमणीक जगह है जो कि देखने लायक ही है। और आज हम बस्ती से जब आए यहाँ, जागेश्वरी देवी माँ का प्रसिद्ध मंदिर है जो कि पहाड़ पर बना हुआ है, और यहाँ पहाड़ से हम देख रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आ गए हैं ऊपर, जो यहाँ की नगरी को देख रहे हैं तो देखते ही बन रही है। और हम चलते हैं जागेश्वरी मंदिर, माता रानी के दरबार में। हमारे साथ हमारे साथी भी हैं मोहन वर्मा जी, जो कि हमारे साथ ओरछा से ही आए हैं अपनी गाड़ी से। हम अंदर प्रवेश करते हैं मंदिर में, और अब हम मंदिर प्रांगण में आ गए हैं तो सामने ठीक खड़े हैं जहां पर शिव जी का स्थान बना हुआ है प्राचीन, और हनुमान जी महाराज की भी प्रतिमा है बगल में। देखते हैं कि यहाँ पर प्रभा देवी और काफी जो चरण सेवक हैं उन्होंने कुछ व्यवस्थाएं कर रखी हैं। काफी बड़ा जो आयताकार जगह में ये स्थापित मंदिर, जगह जगह पहाड़ों को तराश करके कुछ मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। और श्रोताओं, हम आपको बता दें कि माँ जागेश्वरी देवी के मंदिर में हैं हम जो पुजारी हैं, उनसे हम थोड़ी सी जानकारी करते हैं, माता रानी के चर्चा करते हैं माता रानी जी के विषय में। आप अपने बारे में बताएं, आपका शुभ नाम।
2: हमारा नाम मनोज कुमार चौबे है, उपनाम जुग्गे महाराज है। यहाँ हमारे पूर्वज सन 1631 से है, और वहाँ पूर्वजों द्वारा जो ज्ञात है, यहाँ पे उस समय झांसी स्टेट रहा है यहाँ का, झांसी स्टेट था, फिर ग्वालियर हुआ। यहाँ ये विंध्य मेखलाओं के बीच माँ जागेश्वरी माँ विराजी हुई हैं, जो हिंदुस्तान के 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। यह शक्तिपीठ हिंदुस्तान के जो 52 शक्तिपीठ हैं, माँ सती के अंग हैं, 52 अंग जो भगवान शिव की भार्या के इस मृत्यु लोक में अवतरित हुए हैं, उनमें से यहाँ माँ का मुख है। उसके साथ एक किंवदंती जुड़ी हुई है, उस किंवदंती में बताया जाता है कि राजा कुरुम देव हुए हैं, कुरुम शासक, और उनके समय में यहाँ प्राकट रूप है। उसकी खोज बंसीधर चौबे नाम के पंडा जी हुआ करते थे, जिन्होंने की, फिर उनको ये तीर्थ दान स्वरूप दे दिया गया था। इसके बाद यहाँ पर जो शिवलिंग है, 2251 शिवलिंगों के साथ शिव शक्ति का संगम केंद्र है, वाणी से प्रमाणित नहीं होगा। यहाँ एक प्रतिमा है भगवान शिव की और पार्वती की, जो बाहें हाथ में डाले हुए हैं एक दूसरे के, तो ये शिव शक्ति का संगम केंद्र वह प्रतिमा प्रमाणित करती है। यहाँ 7 झरने हैं, 7 झरनों का स्वाद भिन्न है। इस तीर्थ में आए हुए श्रद्धालुओं के लिए संतान प्राप्ति का अद्वितीय केंद्र है। माँ कन्या के रूप में दर्शन दिए हैं राजा को, और राजा को स्वप्न में प्रकाशित किया था कि माँ जागेश्वरी मैं प्रकट होना चाहती हूँ, उसे मंदिर का निर्माण करवा, मंदिर का निर्माण करवा के पूर्वाभिमुख, और उसके पट 9 दिन तक नहीं खोलना है। राजा अविश्वासी हुआ करते हैं, उनके चाटुकार इतने हुआ करते हैं कि विश्वास करना सहज नहीं होता, क्योंकि कौन सत्य बोल रहा है, कौन असत्य बोल रहा है। तो राजा ने मंदिर का निर्माण

0: की जाती है। श्रावण मास में 22 से 51 शिवलिंगों का एक साथ अभिषेक किया जाता है और माँ का भी अभिषेक होता है। नवरात्रि में यहाँ पर काफी रस रहता है। कुमार की नवरात्र में यहाँ मेला नहीं भरता, लेकिन चैत्र की नवरात्रि में यहाँ मेला भरता है और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, चुनरी लाते हैं। जैसे लोगों की कावड़ यात्रा होती है, यहाँ पर चुनरी यात्रा होती है। जगह जगह से लोग चुनरी लाते हैं, अपनी आस्था को यहाँ माँ के पास प्रकट करते हैं। माँ के प्राकृतिक नेत्र हैं, जीवधारी जब सामने खड़ा होता है तो माँ स्वयं देखती हैं। यहाँ सामने खड़ा है, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि और जन्म कोटि अगनासे हूँ तबहि। 11 वर्ष से यहाँ रामायण चला रहा हूँ जो निरंतर गति में है, और ये तप स्थली, भजन स्थली, तंत्र स्थली, सिद्ध स्थली और शक्तिपीठ है। इतने प्रकरणों के समाहित है ये। यहाँ पर दत्तात्रेय की प्रतिमा है, जहाँ अनुसुईया जी ने कमंडल से जल छिड़क करके उनकी सतीत्व को नष्ट करने के लिए जब तीनों देवताओं को भेजा गया था, ब्रह्मा विष्णु महेश को, तब उनको बाल स्वरूप बना दिया गया था। बाल स्वरूप प्रतिमा भी यहाँ है और यहाँ पर 22 से 51 शिवलिंगों के साथ दत्तक गणेश भी है, दक्षिणावर्ती गणेश। यहाँ जितने गणपति है वो सब दक्षिणावर्ती है, और यहाँ भक्तों श्रद्धालुओं के लिए अद्वितीय शांति प्राप्त की जाती है। यहाँ पर भिखारी नहीं है, कोई भी भिखारी यहाँ नहीं मिलेगा। और यहाँ पर शुरू से ये नियम है कि अंदर जो पुजारी भी अटते हैं, जो अन्य तीर्थों में कल्चर है कि भक्त आया नहीं कि पुजारी चेटे, यहाँ पर इस तरीके का कोई स्वरूप नहीं है। यहाँ आने के बाद भक्त स्वतंत्र है, वो अपनी आराधना अपने हिसाब से कर सकता है, उसको कोई ना भिखारी छेड़ेगा ना पुजारी छेड़ेगा। यह विशेष पवित्रता इस तीर्थ की हमेशा से है और रहेगी।
1: आप और जो भक्त आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो उनसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं उनको यहाँ के स्थल के बारे में? कि जैसे देखते हैं कि कभी क्षतिग्रस्त भी कर देते हैं या साफ सफाई को लेके उदासीन रहते हैं कई लोग, तो उनको किस तरह से आप कुछ कहना चाहेंगे?
0: यहाँ आने वाले भक्तों श्रद्धालुओं को समझाते हैं और साफ सफाई यहाँ हम स्वयं करते हैं, पोताई स्वयं करते हैं, रखरखाव स्वयं रखते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई सहयोग प्रशासनिक या नेताओं से नहीं है। और यहाँ पे 11 वर्ष से रामायण चल रही थी, उस रामायण को यहाँ के नेताओं ने और कर्मचारियों ने मिलकर के छेड़ा था, पंडा परिवार को भी सताया गया और यहाँ पर विकास तो नहीं किया गया, अभी तो सताया जरूर गया है। व्यवस्थाओं को कभी बनाने की किसी नेता ने या कर्मचारियों ने कभी कोई कोशिश नहीं की है।
1: आप हमसे जुड़े और
0: पर्यटक आते हैं, पर्यटकों के लिए कोई शिकायत नहीं रहती, पर्यटकों का भव्य स्वागत किया जाता है। बाहर से विदेशी जो पधारते हैं उनको विशेष तरीके से स्वागत किया जाता है और उनको आदर सम्मान दिया जाता है। जो भी बाहर से पर्यटक आते हैं वे यहाँ प्रफुल्लता से बाहर जाने के बाद यहाँ की तारीफ करते हैं।
1: जो हमारे देश की, हमारे भारत माता की शान और एक आदर्श है कि अतिथि देवो भव, तो उसका आप साकार करते हैं।
0: यहाँ अतिथि देवो भव को साकार करना हमारा कर्तव्य और दायित्व बनता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और अपनी बातचीत की हमारे साथियों के लिए। आपको पुनः नमस्कार, धन्यवाद। और मित्रों, यहाँ पे काफी दर्शनार्थी भी हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। आप अपने बारे में, आपको शुभ नाम क्या है दादाजी?
2: हमारा नाम रामेश्वर प्रसाद याग्निक, रिटायर शिक्षक। हमने 40 साल मास्टरी करी, 20 साल मिडिल स्कूल, 20 साल हायर सेकेंडरी स्कूल, 1 साल जावरा रहे।
1: तो आपन इतनी के हो?
2: यही के।
1: अच्छा, तब तो आपन कैसे महसूस करते यहाँ जन्म लेके ऐसी अच्छी तपोस्थली में, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ के बारे में?
2: हम जो है देवी जी की बहुत अनुकंपा है हम पे। हम बचपन से आ रहे हैं, 5 वर्ष की आयु से आ रहे हैं, देवी जी के उनकी कृपा से हमारे सब भंडार भरपूर है और हम जो है उन्हीं के आशीर्वाद से फल फूल रहे हैं। हमें किसी का ना देना है ना लेना है, बस माँ का दर्शन हो जाते हैं, दिन भर चैन से कटता है।
1: आप शिक्षक हैं और हमारे जो युवा साथी हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं?
2: बस सब खूब धर्म के प्रति आस्था बनाए रखें, धर्म में आस्था बनाए रखें। और हमारे पंडा जी ने अखंड रामायण चल रही है, राम भद्राचार्य जी महाराज ने चालू

0: करिए, यहाँ पंडा जी को बहुत मेहनत करते हैं, सबको खाना खिला रहे हैं, सबको चाय पानी ना सबको।
1: रामचंद्र जी का मंदिर है।
0: हाँ, वो खंगारों का है। और वो जो है किराए पे, ऊपर दो मंजिल है, नीचे बहुत बढ़िया मंदिर है, हनुमान जी की मूर्ति है, बहुत सुंदर मूर्तियां उसमें रामचंद्र बोल रहे हम देखिए, और बहुत बड़ा है मंदिर।
1: अच्छा।
0: हाँ, उसको उसकी व्यवस्था जो है पता नहीं कौन कर रहा है, लेकिन यह है कि बहुत अच्छी जगह है।
1: अच्छा है।
0: हाँ, बहुत बढ़िया है।
2: तो साथियों, अभी हमने चनेरी में जागेश्वरी मंदिर की ये विशेषता और वहां की बातचीत सुनी जुग्गे महाराज से, और अब वक्त हो चला है एक और गीत का। सुनते हैं एक और लोक गीत धन कुंवर की आवाज में।
3: देख

साथियों, अभी हमने धन कुंवर के स्वर में ये बुंदेलखंड पर आधारित लोकगीत भी सुन लिया और अब वक्त हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से आप सभी से विदा लेने का। और मित्रों, विदा तो लेना ही है, आपकी अब वारी है, नंबर है आपका कि आप हमें फोन लगाकर बताएं कि ये जो कार्यक्रम है, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, आप सभी को कैसा लगता है कार्यक्रम। मित्रों, अगर आपकी चिट्ठी या फोन आ जाते हैं

बहुत ही खुशी मिलती है कि चलिए हम जो कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे हैं वो आपको बेहद पसंद भी आ रहा है। तो आप हमें अपनी प्रतिक्रिया, अपनी सुझाव, फीडबैक जरूर देते रहें हमारे इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए। और हाँ, हम आपको बता दें, अगर आपकी जानकारी में अपने इस क्षेत्र में, अपने बुंदेलखंड में ऐतिहासिक, आपके गांव की कोई विशेषता है, आपके गांव में कोई ऐतिहासिक मंदिर या ऐतिहासिक किला या मठ, जो भी इतिहास से जुड़ा हुआ है, आप जरूर हमें बताएं। 9425-14-17-26 पर अपने सुझाव दे सकते हैं। नंबर पुनः सुने, 9-4-2-5-1-4-1-7-2-6। हम आपके फोन का या पत्र का इंतजार करेंगे। मित्रों, हम आपको बता दें कि आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमारे इसी नंबर पर और लिख सकते हैं अपने गांव का नाम, अपना नाम और कार्यक्रम के बारे में कि आपको कैसा लगा। तो बस अब अपने रेडियो साथी जगरूप को दें जाने की इजाजत। अगले कार्यक्रम में फिर होगी ऐसे ही मुलाकात। तब तक के लिए स्वीकार करें नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इस वक्त अपने दोस्त माता दीन के संग में। और दोस्तों हम लेके आ गए कार्यक्रम बुंदेली किस्सा। तो आप दोस्तों सुनते ही कहानी खो लेते ही कहानी को आनंद। तो साथियों आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दीन के संग में।
1: कुवते राजन के कुंवर
2: आओ
1: और एक हते बानिया के लड़का।
2: अच्छा, मतलब एक हते राजा के कुंवर,
1: एक हते बानिया के।
2: आज दो जने हो गए,
1: दो जने हो गए।
2: हाँ,
1: अच्छी तरह से गए उनकी दोस्ती।
2: हाँ,
1: उनकी दोस्ती रहे सो अपने काम काहतो के पढ़ लिख के जो भी आ गए सुबन को चले जावे।
2: दो ही के दो,
1: दो ही के दो शिकार भी अपनो घोरो मस्के, भी अपनो घोरो मस्के। अब जब वन में पहुंच गए तो जा शिकार खेली, बस शिकार खेली, खेल खाल के अपने घर पहुंच गए। अब कल को दिन बरतीत ने फिर कर गया।
2: अच्छा,
1: कल के दिन में भी बोले बोले कर ले बीरन बोले। अब बीरन ने कही कि हम तो भाई ससुराल जा रहे।
2: अच्छा,
1: अब राजन को नहीं है तो पतो के हमारे ससुराल देखे। अब राजन को तो बस बीरन हते अपने बानिया कितने सकत बीरन।
2: अच्छा,
1: बीजन और बादशाह दोनों जने हो कहकर राजा हो बादशाह। बार मार बनवाए, दाढ़ी फाड़ी बनवाई, बार छटवाए, कले कबैया का किला नहीं छटे, कले ससुराल हो जा रहे।
2: अच्छा,
1: अब जब नाव घेगो से नाव खो रख तो गांव भर को के फलाने के ब्याह है, फलाने के लगन है, फलाने के सतकरा है, फलाने के पक्या थे।
2: जा सही कही आप,
1: नाव को सब पतो है।
2: हाँ,
1: तो नाव को तो राजन की कुमार की ससुराल को पतो
2: ऐसा।
1: तो बस अब बीरन के बार बन गए।
2: हाँ,
1: अब राजन के बादशाह के बनने।
2: हाँ,
1: तो बादशाह के बार बने।
2: हाँ,
1: तो बादशाह बोले बोले कर ले काय सुताजा का बोले कर ले कही राजन के राजा।
2: हाँ,
1: बोले कर ले बीरन तो जा रहा ससुराल है, हमारा हम किसे चली जावे। अरे बोली कर ले राजन की राजा, आप किसी ससुराल तो पृथ्वी पे काउगी है ही नहीं है।
2: अच्छा,
1: तो बस बोली कर ले अच्छी। सब भी तीन जने हो गए।
2: अच्छा,
1: के नाव होगा बादशाह होगा बीजन हो गए। अब तीन जने की दोस्ती हो गई। बस अब चली ससुराल के जाने। तो उनके राजन के कुंवर के पिताजी

0: ने एक गेहूं ने कुज्जा खुदवाई थी तो बा में बीजक लगवाओ तो कि जब हिरण की ससुराल को गल गई वो जब बादशाह की ससुराल को गल गई।
1: अच्छा
0: गली कू में से बटी लगी उन्हें लगी प्यास तो राजन ने हुक्म ढीलो चलो वीरन पिया पानी तो वीरन गौ पानी पीवे के लाने तो बाने बीजक बाँचो।
1: अच्छा
0: बीजक बाँचो वामे सू में गलियां अलग अलग वीरन हो बदमाश वीरन बदमाश हो।
1: अच्छा
0: तो वीरन ने का करो किसका के पानी पी के बाउली में वह बीजक को भरा दो
1: ले उसका तो
0: अगर हमारे आगे जब बीजक को जो राजा पानी पी भी आ रहा तो जब बातें ले से संग छूट गो इसे के हम जी ससारे चलेंगे
1: चलेंगे
0: तीनों जने
1: तीनों जने।
0: हाँ जा पे बीजन बदमाशी के रहो तो बस अब राजा पानी पी गए। हाँ तो राजा ने पानी पियो जो तमाम बावरी में ही सुबह में बीजक में गिराव लगो रहा तो राजन ने अपने खोबन की उली चुली के बाय धो जाओ और फिर उगे बाँचो बाँचो बाय सुबह ने उनमें प्रधान पूरा लिखो कि जा राजन के कुमार को रास्ता गई और जब वीरन के कुमार को रास्ता गई दोनों जने तो वो लिख लेते वे वीरन बोले ये राजन के राजा बोले तू बहुत बदमाश है बोले कल पुरखन को बीजक के नहीं बता दिया है हट कर ले कि हम अपनी ससुराल देते अपनी ससुराल तो बोले कल उनकी शर्त लग गई।
1: अच्छा
0: बोले कल जो पहले आगे विदा करा के वो जज बाउरी पे ठहरे क्या जिन किसी को बीत जाए अपनी ससुराल चले गए और भी अपनी ससुराल कर ले जी सताई रखा नाउ बोले कल जी राजन के संगे चले
1: सही है
0: अरे हमारे वर के संगे का चले हम सेठ आदमी और राजन के संगे जी और हेल्पर चलते हैं कल तो राजन की कुमार और सताई रखकर दो जने जा रहे भी अपनी ससुराल चले गए। अब सब राजन के कुमार जा रहे से बन कजली में पहुंचे तो अब राजन की कुमार को लगी प्यास बोले कल सताया कब बोले कल ये राजन के राजा कल हमें प्यास बहुत जोर से लग रही और हमारे सागर सही से प्राण निकले जा रहा है इसे पानी को देखो बोले कल राजन के राजा बारह कोस में ना पानी ना माए पानी अपन वन में हैंगे बोले कल अरे क्या क्या बोल रहा है ना का के बोले कल हो महाराज सुबह एक का खैबर पे चढ़ी ऊपर देख के भी लंबे जिस ऊंची जांगा हो सब देखा ऊंची जांगा हो गई चढ़ी तो ये उत्तर दिशा में बगली मर रहा है तो नाव ने सोची कि बिन पानी की बगली रहती नहीं है पानी इधर होगा
1: बिल्कुल
0: तो बोले कल राजन के राजा पानी तो हमें कहीं दिखाना नहीं है उत्तर दिशा में बगली मर रहा रही और बिन पानी की बगली नहीं रहती पानी जरूर हो गया बोले कल चल चल ले जा सुबह लोटा घड़ी ले के और चल अरे खुली जाए सुबह जन में दे पाई खुली से जीत गए कि हां फिर बाहर आराम से बिन नगर चले गए तो उतर काकस्ता हाथों के जोन वाली लड़की राजन को भी आई थी वो नदिया में स्नान कर रही।
1: अच्छा
0: वो नदिया में स्नान कर रही थी तो सुताई अक्का ने कहा करो झटपट पानी पी के और मचो सचो भर के और पहुंच गए। बोले कल सताई का बोले कल ये राजन के राजा बोले कल उस तालाब में पानी ये सो ठीक है तुम ले आया बोले कल महाराज जाकी ना पूछो से पानी पी लो तुम बोले आप तो पानी जब पिए जब जब बात पूछ ले बात है क्या क्यों पानी जो मचो लिया होता ऐसा जल्दी हो थे कि मचो सचो भर के आ गए बोले कल महाराज कल ऊ तालाब है वो बड़ी अजीब का लड़की सपर रही है तो उसके साथ हमारे मूल चाचा के गिर पड़ी तो हम तो सब मचे सचो भर लिया है वो हम खुद की आसन मर जा रहे अरे बोले कल बगरा भी तो वो पानी बगरा के तालाब पे पहुंच गए तालाब पे पहुंच गए तो तालाब पे पहुंच के बाद वो कल सुधायक का बोले कल कहिए राजन के राजा बोले कल स्कूल लड़की को पूछने तो जरूरी जब बोले कैसे
1: सही है
0: जब पीछो करें अपन ताए को और मुंह करें ताला ताए को।

0: नव कक्का ने कही के
1: नहीं राजन ने कही जावा
0: राजन ने कही जावा
1: राजन ने कही जावा उनने फिर कही उनने अब्बा बोले जल में ठाड़ी जो
0: अच्छा
1: अब्बा बोले
0: लड़की जो नहा रही
1: जो नहा रही बा बोल रही है।

0: सताई आपका बोले कल राजन के राजा सुनो हमारी बात अभी से बोल दो ना।
1: सही है
0: अभी से बोल दो ना बोलो कब का बना दे वाले
1: बताओ
0: हैं
1: सही सही
0: बोले कल नहीं अबे तो हम इससे और बोलेंगे।
1: हाँ
0: अब राजा बोल रहे हो
1: हाँ
0: भूले वो।

0: गलिया ए लेखो बाता दियो रे सो लगे काहू के अरे द्वारे जी। इन्हें गली बता दो सो काहू के द्वारे में
1: आप पहुंच जाए।
0: अब कहिए हाथ उठाते हैं अगर बता दीजिए। अब बस जल के भीतर हुई। अब इनको समझ में नहीं आ रही जल के जाए। इनको बदन शरीर है कैसो मुंह करने मायक हो और पूछ करें इंतायक हो कई के। अब जाइए से बताया तो निकल बालो माँ से बोली।

0: या वाद मिल जाओ।
1: अच्छा
0: हाँ, मिली ना बताई न बाने बदन काड़ो जल नीर में रही बा।
1: अच्छा
0: अपने पर्दा भी कर रही बस साहब उनने किसी गली तो पूछ ही गई गली पूछ के उनने घूरो बढ़ाओ गाँव की लानत तैयार हो गई। अब बाने सोची कि ये मुसाफर अगर पहुंचो जात तो गड़बड़ हो जाए बाने जल्दी पल्दी सफरों सफर खूर के बाप ने जेल चली जो ये हती से जात भवन द्वार अक्का को देखो तो ससुराल सुबने द्वार उनने अब पहुंची घरे पहुंची घरे सुख गई घरवाऊ को बंधो अब भाभी से बोली भी

0: बिल्कुल क्या अब तुम
1: दबा भी नहीं थे ऊंचे कंदीला नंदी नीचे करो बातन जिन बतराओ
0: ऐसे
1: और तुम्हारी आ गए चाला
0: अब लुबग्गा आ गए तुम
1: लुबग्गा तो उनने फिर भाभी से कही अरे भाभी आज नाश्ता तुम न बनाओ आज हम बनाए
0: ऐसा।

0: अभिषेक है।
1: सुबह सुबह में घरेला उतार के अपने नाश्ता बना दे के लाने तैयारी के लिए तैयारी करी। अब इन दो ने कही चला
0: अच्छा
1: बोले कल देखो अपन को कौवा गेल कुमार बनाए थी।
0: हाँ बिल्कुल।
1: अब भोजन नहीं करने अब भोजन नहीं करने इसके यहाँ वाला कह जाएगी।
0: सही कह रहे
1: अब खुला खुला थे अभी नहीं खुलो
0: हाँ
1: में तो सलाह हो रही दो जन की सलाह हो रही नाव की और राजन की। सुबह सवती सोने व्यंजन की भोजन बने भोजन बना के और अज्ञा दे गई भोजन के लाने तो दोनों जने भोजन को गए। भोजन को गए साफ सोने चाहे एक ले चाहे खाई हुई चाहे दो खाई हुई और वहां से बने थना ना जवाब
0: ठोक। अच्छा
1: ठोकने ठोकने ना तो भीड़ कैसे खुलेगा।
0: हाँ सही है।

0: में टाकी सरकार के माए अब अभी खुलवाओ के जय है
1: सही
0: जब बात बब्बा ने बात खोली तो बोले समझ गए तो उनने माँ ताठी मारी सरकार के और बस सुता जा कान पर झटपट जो कसी राजन तेरी तो बाप बांधी और बाप नहीं बांधी और बस ताठी मारी राजन बोले कल अभी तक क्यों आया बोले कल भाई मैंने अपनी ताठी धोई वो आपकी धोई और फिर मैं आया बोली कल सुन ले कल सुत्ता ना उन पाए वो अपन घूरो कस के तैयार हुए इस पापन को मिलवा जाना इसको मिलवा जाना तैयार हो गए जहाँ से करा उनको तो उन्हें भैया घूरो कसो सब रात में घूरो कस रहा सुबह ऊपर को पले चवन पीट तने कस रहा क्या है जो ऊपर का पलेचा नीचे कस दिया गया तो उन्हें भज्जा छोड़ चार के दोनों राम के पास है जंगल झाड़ी वाले निकल उठे निकल के और बस फिर करी तो भाभी पूरा पड़ोस की जनी ने दोहा दो बनी रेशम डोरा पाटे कोरे जले दियो रे चाटे।

0: नहीं देखो रिश्तेदारी है
1: सही है
0: वो जब तुम दिन चटकाओ और टूटने से जब जुड़े नहीं वो जुड़े सुन में गांठ पर
1: गांठ पर जाए
0: गांठ पर ये जाओ मैं
1: नहीं गए
0: उनके तो रुक गए जो पड़ोस की
1: पड़ोस की ने कही जवाब
0: पड़ोसन ने सोची कि अगर हम भोजन कराऊ तो केर बेर को संग है
1: सही है
0: डोल भर ये जाओ तो उनने हटीसो जैसे कछु पुटिया पर मुद की वही रानास में ले गए
1: फिर कमाई खोर पाया ले गए
0: मैं कहूँ वही जहाँ उनकी रानास थी फिर पहुंच गए भाई सतखंडा पे पहुंच गए तो अमन ने सोची रानी ने कि अगर भोजन भी है तो ये भूखी अब रात को है समझ गया ना हो तो हम भोजन नहीं ले जाए तो भोजन उनमें लगा थाली को भी पहुंची तो लगा थाली जो छाजी पे चढ़ी भी तो बिस्किया पहने की भी तो वो बजो बिस्किया बजो तो उनने बिस्किया की आवाज की सुनकर मूर भूल गई बन गई और असम दुहा दे रही संकेत।

अरे आगे नहीं तो अरे भोर जी, अरे अगर नहीं खाओ नहीं तो भोर खा लो, इसे तुम बोलो ना उनसे, लेकिन बाने खरीदो जाकर कहो।

पूरी कामनी। अरे खोलो अरे किवार जी, उन्हें खोलो कंच के बार, लेकिन उनमें नाव से कही के बार नहीं खुल गई। अब जो जो है सुनो साधु ने, साधु ने सुनो दोहा, साधु के राम से शंख बजे सा दू जा रे वा बामे

0: कहे जी उन्हें शंख बजे से साधु जगे बम घले रहे झूल, अगर इतने में के बम घर रहो वो नहीं जग रहो तो कुछ कब पूछे
1: सही है कि का हो रहा
0: का हो रहा
1: कत्ते दुनिया भगत जा मेरे बीच होना कर जाए।
0: अब जब इतनी बातें हो गई तो परोस में पतो होगा कि रानी राजा के पास मिल भी गई। अब फिर की दो भाग कह रही है।

लड़की लड़का से लड़की भाली रे सो मेरी पे ब्याएगी। अरे ऐसी सासों का काम की हटी तेरी कुखन बांजाई हो जाती। ऐसे सब कुछ जाए तो लड़की होती तो परोस मिड़ी पे ब्याह शादी कर देती तो वो रहती ये तो गड़ गया है ना यार। सुबह पटक थार और भी भागी आई। जब थार पटक के में भागी आई सुबह अपने घर में अब रात को समझ गया कहाँ जा रहा है जो सबीरम हो सोने घोरो मस्को चलिए। तो ससुर साहब ने कही करी दीमान जी ऐसे नहीं चलो हम आपकी स्वागत कर रहे और सब बात को बाहुलाओ और भोजन करो भोजन करके हम आपकी विदा कर रहे। ठीक है जो गए डट गए खाना खाओ खाना खा के और पीने सुनने सजाई तो उन्हें विदा उनकी कई गए उन्हें खाना पीना सब तो महीना भर के लाने रखता आपके जे घर चले गई। बस आओ अभी हतीसु अब तीन हकावे बारे हतीसु जैसे गांव के बारे कड़ी तो उनमें मार जताई फिर भी भक्के छोड़ के अब खुद उनमें हकाई अब सुताई अब काल है कबाज जी ने हकाई सुबह हका के हो बस सब कहीं ऐसी और चली हुई तो शाम हो गई से एक बमूरा को पिलो रहे से उतरे बस गए शाम हो गई से बस गए। बस के में अब बोले कर ले सुनो सुधा का बोले कर ले का कल ही पापन को ही छोड़ जाने यही रुकता है। अब बस सुन रही थी बस सुन रही थी सुबह ने कही के ठीक है सुबह सुताई अक्का से कही के सुताई अक्का ऑर्डर दौरान ही है कपड़ी लगाओ सताई का गैसे तीन पात में लगा एक अपन को एक राजन को एक रानी को। तो बस भी

पात्र में कहा खोल लिया। बोले कल एक आपको एक हमको एक रानी को। अरे बोले कल रानी की फार के फिर जमा रानी की फार के मैं फिर अब पात्र लड़की आई तो खाना खाओ खाना खा के पड़ी पड़ी सोई। अब रानी ने सोची कि जो भगत हमें छोड़ के हैं इसे का कहें जज्जे सुबह घोड़े की पछाई की जो ये रहती एक बजट बात सुबह डोर बंदी थी सुबह छोड़ के बाने पीने से मार लाई बडोर को कि जो भगे तो जब ये टूटे समय यहाँ का अगर हम सो गए आँख खुल जाए तो हम इसे कचू किया ले सुबह सुनने थी सुबह घोरो भंसाई रात भाई को बड़ा सुबह तनो वो तनी बडोर कहीं दूर सो नेक चावा पट्ठो को घोरी में सुबह दूर सो उनने कही रानी ने

एनर्जी थी, थर में बुझा गई हमें। हम न जई गांव के रहे न बई गांव के रहे, अभी सुन जलवारे के चले गए, वे अपने भवन को चले गए। अब रानी ने अति से कहा कि नस्खो वे घर वाले और बाने हकाओ हकाओ को रानी को गाड़ी हकाऊ थी हकाऊ थे रानी तो हका जो वैद्य से कचुवती से राजा गिलंद की बाग में जी जा रहा जा रहे से वन ने भज्जा घर वन ने नाय के तूपी माय की बोलैया तूपी दिया जो रानी वो तो मालिन है जिस मालिन गोली गोली कर ले गया ये कौन कहाँ की पाप नारी कहती है तूने एक मोर रानी ने वो मालिन को दई सोनियारी जी तो राजा की बहू में भीतर कारवाई बाबा गिरा दिया जाए अभी तो राजा की बेटी थी तो कछु मोरन को कछु टूटो है तो रही हकी भी तो अपने इंतजाम में अपनी कुठज्जा में उन्हें दुकान रहे कहाँ रहे सुई सुई कछु बिलाद दिना हो गए दुकान दुकान सो एक दिन अब उनकी बेटी हकी राजा की यानी जमदीप नाव तो का नाव तो बेटी को जमती नाव तो बेटी को सो बिन्न बे फूलन की तुला तो लगती बा सो मालन रोजी ना डाली लगावे और फूलन को ले जावे सो राजन महती सोची के अब मालन तो इतने आऊ तो हम आज बगीचा घूम आए बगीचा घूमन गए भी सोते बाद राजन की लड़की रह राजन ने सोची कि जितो काछी माछी की तो जाहे नहीं है, है तो को राजा की लड़की सुबह जैसे कैसे अपने घर पहुंची घर पहुंचे सो घर पहुंच पाँच के उनने कही अब्बा से कही मालिन से उनने कि माता जी रोज तो डाली तुम लगाओ आज डाली हमें लगाओ तो उनने डाली उन्हें लगाई बादशाह ने हती सो राजन की पिया न्योती बाबे न्योता कौन कौन अबे न्योता पिया रखो सो राजन ने सोची अब उनकी रानी हती बादशाह की सो अपने उन्हें थारी लगाई दो उन्हें पैसे बिजना की हवा कर रहे बिजना की हवा कर रही रानी उनकी बादशाह की सो बिन ने सोची अगर बिन तो हमारे खुलवा लिया उसी बल में ना छोड़ी आउती भाई ना करती हवा सोने हर सांस लगी सो बीरन ने सोची कि कोई बात में खरखसा है राजन की बात में कोई खरखसा है सो नाव से पूछी जावा बोले क्यों खवास रखता बोले कल कहिए राजा कल कारण का है ई को राजा हर सांस ले रहे भोजन नहीं कर रहे कल ये रानी को बन में छोड़िया है और भग गया सो उनने अति से घोरो उनने सजो और वीरन ने सजो और पहुंचे बोले कल चलो बताओ कि कौन छाड़ में छोड़

0: फिर जो रुख तरह छोड़े थे वही रुख तरह ये गए दोनों जने नाव नहीं गए वे दो ही गए सो बोले कर ले अब उन हती सुबह गाड़ी बर पीनस की जो रास्ता थी वह धरी सो मालन के पास भी पहुंच गए राजा दिलंद की बाग में और गए पहुंच गए सो उनने कही ठीक है उतरे जाके इनने का किस्सा करो कदीरा दो जन ने गए सो उनने भैया मालन ने उन्हें घर आए बोले कर ले क्यों रे कहा हो परदेसी कैसी फिर रहे तुम जगह बात वो हमारे राजा सुन पे तो तुम्हें जान से मारा ले हाँ सुबह आराम से मालिन को साड़ी तो मालिन से पूछी सारी बात तो मालिन ने उन्हें सारी बात बता दी कि रानी जो है वो रंग महल में पहुंच गई राजा दिलंद की अब अरो कमाओ ने वास्ता तो बदमाश होते ही तो कोई जो रूप काट को वो रूप काट उन्हें उपद्रवी साड़ी करी तो मालिन की जोर में पहुंच राजन बोली कल एक दो घोड़े वाले आए और भेजा के और बहुत परेशान कर रहे उनने सब नाश कर दिया बगीचा को तो उनने छिड़ गया चलिए तुमको राजा बुला रहे बोली कल हौसा जब तभी ऊंची हती भीलपोल की और जहाँ से वे सज बज के फिर गए वे अपने अपने घोड़ी ले के बोले उनकी गैल में सलाह हो गई बोले कल तुमसे बात करे से तुम मूर काट लीजिए और हमसे बात करे तो हम मुर काट लें बोले ठीक है सुबह गए सो राजन की बगल में एक बोले बैठो अब उनने हटो एक बीजक राजा गिलंद कि अगर जो बीजक जी लो पहुंच गए हम उस लड़की की शादी उसी के साथ करेंगे तो अब उनने फिर तो जब सलाह हो गई बस सकार से काम लगाओ अब वो रानी ने डेरा जाओ डेरा जाओ देखो भाई राजा गिलंद ने जो बात खो बोली कि तो हमारी रानी बन जाओ बोली कल नहीं ये राजा गिलंद को बाग कटे चलिए और जो मकान गिले चलिए सुबह ने कहा तो ठीक है सुबह जो बन गए जो काम लगो सुबह अपने मजूरी खोने की जावे सुबह रानी जो बबी की अच्छी से छाजी तो जातन कर रही थी तो बीजक लाई थी बबी जब वो लोटा के कर रखती जातन वो लोटा में लिखो है तो सुबह बीजक खो गई जो बाद साल में बच गई बीजन बच गई बाद साल में बीजन ने बच गई बोले कर ले ठीक है बोले कर ले ठीक है तुम तकरा पटकट पटकट वो तो सार पांच ही की पड़ रही और तुमने पहचान नहीं करी कि सुबह तुम ना तुम सानो हम ये डारा सुबह गए डारा सो आराम से गए डार भी के लाने से तनक तसला में से गिलाव पहुंच गए वो इमेज दाओ उबेटी में दवा में जो राजा गिलंत की लड़की सो उन्हें अति सो अब जो खिलाड़ी हते सो उन्हें बोई लोटा दाओ बोई लोटा उनमें दाओ सुबह ने अच्छा ले लाओ ये गेंद की बल्ला के अब ले लोटा हो गई बाग में पहुंच सुबह सुनने फिर भेजे छड़ गया पकड़ लिया सुबह जब भी गए पकड़ा सुबह देख दाग के कल ये कौन मजबूर हैं ये तो कोई राजा है सर तो क्यों इनसे बोलत कैसे हैं बोले कल ले महाराज तो नहीं है मजबूर संजीव तो जो राजा पर बोले कल ले जा पर बोले पकड़ लिया सुबह जब फिर गए बोले कल ले आ रहा चलो अब दुनिया में लग गई थी वो बीजक उनने वहां से लाओ पूरा ये कब दो मिल रही दो मिल रही सुबह लेकिन भाई फिर उनकी सलाह तो बहत गई कि अगर तुमसे राजा बात करे तो हम उड़ काट ले हमसे करे तो तुम काट लो सुबह राजा का उसे बात न कर गए चुपचाप बैठे गए दरबार में भगवान एक दिन आओ तो बोले मेरे को क्या के पहुंचे गए तो राजा ने कही बोले कल ले कही साहब कहाँ के रहने वाले हो कैसे हो बोले कल ले के दीजिए फिर वह लड़की की शादी करी उनने उनकी रानी होने हती बात तो
1: देखो दोस्तों या तो अपन सब जन ने किस्सा सुनी है यानी कि कहानी को सुनी है और ई किस्सा को आनंद लाओ अब एक संगे संगे अपने दोस्त माता दिन को हो रहा आज के कार्यक्रम से जावे को समय तो अपने दोस्त को दो ई कार्यक्रम से जावे की अनुमति अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात ई कार्यक्रम में एक बेरा पे जब तक के लाने नमस्कार।

0: रेडियो बुंदेलखंड के सभी श्रोताओं को भैया अपने काशीराम की नमस्कार पहुंच जावे। और भैया आज हम आप सब जन के लाने एक बहुत ही नौनसो कार्यक्रम लेके आए हैं, जिको भैया आप सुनो और सभी पंच सुने। और भैया ये कार्यक्रम को नाम है सुनो जी का कह रहे। तो आज अपन बुजुर्ग दादा भैयन की बातें करे और सुने, और एक क्रम में राम गोपाल दादा है, अपन इनसे बात करे और जी अपन को कुछ बताए। लेकिन ई के पहले अपन सुनत है एक बहुत ही नौने से गीत को, जी को भैया गाव है रजनीश दुबे ने। और देखो ऐसे शब्द कहे इनने इसमें के आप इन शब्दन से गीत में इनने समझाओ है का कही। दरस राम की पाके और हो वे धन्य भाग जहाँ के, अगर दर्शन अपन भगवान राम के पाले हैं तो अपने धन्य भाग हैं। और भैया तो ये गीत को सुनो, आप सुनो सभी पंच भैया।
1: दरस राम के पाके

0: हाँ तो भैया अबे सुनो, अपन सज्जन ने जो गीत और रजनीश दुबे जू ने कितने अच्छे नौनी तरीके से अपन गाओ के सम बताओ है, और अपन सज्जन ने सुनो है। अब अपन बात करते हैं राम गोपाल कुशवाहा जू से।
1: दादा राम राम।
2: राम राम।
1: अपनो दादा नाव का है
2: राम गोपाल।
1: तो दादा अपनी उम्र कितनी है आप?
2: हमारी उम्र 70 है।
1: अपन काके रे विवाह हो दादा?
2: केना के पूरा पटक गया हम केना जिला टीकमगढ़ तहसील नेवाड़ी।
1: अबे आप दादा का करे तरह
2: ये हल्को हल्को काम कर अपने ढो बची देखे न
1: और
2: वर्कर हम करा बस किए काम वाम हम कहते मिले।
1: आप अपने परिवार वाहन से का के वो चाहते हो?
2: परिवार वाहन से का के विचार कर जब से तो जैसी समस्या है तो अपने भगत रहे।
1: आप जो बता दादा कि बुढ़ापे में अपन का कौन कौन सी दिक्कतें आने लगत का परेशानी देखते आओ आउती है अपन का
2: भी तो देखो ना खाना मुड़ा एक बात देखो घाम लगा काम दौड़ नहीं पाओ लिंग नहीं पाओ घूरे फिरार हर एक बात की मतलब नेक में मुश्किल दिखा दो अगली बात।
1: और वैसे वो समस्या है अपनी?
2: वो समस्या जो बाल बच्चे खा रहा है हमें ले आया हम खा रहे
1: अपने मोड़ी मोड़ा अपने पास बैठ भी आओ
2: बैठ भी आओ नहीं आओ पूछा थे।
1: अच्छा
2: अस्पताल जाने
1: और अपने सेवा खुशामत के बारे में आप क्या कह सकते?
2: सेवा खुशामत सब करा थे जनाब जी बैठे अब बैठे भी है तब जो लोग ठीक नहीं है चला फिर कर लेंगे तेना
1: दिक्कतें हैं उनको अपन कैसे झेल सका था का कह सकते
2: आप झेल सका मतलब बैठ वो है सीधी बात है पैसा जो खाए तो चाहिए अरे कछु नानिया कछु तो 10 रुपये 10 उसको तो खर्च है आदमी को वहाँ मान के चलो कछु ना कछु वो 10 उठा के चल जाते हैं।
1: दिन भाई आपको कैसे कटा
2: था? ढोल बच्ची उनता दिमाग लगा ले सिजारे सिजारे अपने छाने बैठे बस।
1: अच्छा और अबे तो आपका दिक्कत दिखावे की तो दिक्कत कछु है नहीं ऐसी जैसे का आप बुढ़ापे की
2: बुढ़ापे मतलब
1: दिक्कतें आदमी का
2: दिक्कत तो देखे नहीं होती नहीं है तुम्हें जो कागज है जो जो

0: बांस पा रहे हैं हम, मतलब उस दिखा दादी बांस पाऊ दिखा सकते।
1: और अच्छा ऐसी कौन अपनी परेशानी है जो आप ना कह सकत हो, खावे पीवे की आपकी का है?
0: खावे पीवे कौन तक नहीं आ रहा है, मतलब जो घर में है तो खा रहा।
1: अच्छा अपने माता पिता की सेवा में और बेटी में का अंतर है?
0: चलो इज्जत रहती समय अनुसार इज्जत रहती, इज्जत नहीं आया और पापा जाना फैली, अरे पापा की जाना फैली के मतलब अपनी अपनी चाह रहा हूँ आदमी, हमारे वाले बच्चों जो चीज मिल जाए हमारे मिल जाए दूसरी की जटाने न मिल गए दीवानी न मिल गए, ऐसी समस्याएं मतलब अभी के समय में।
1: तो अपन का के वो चाहते हैं कि कैसे हो चाहिए अभी के सब का
0: जब जो हो चाहिए शांति हो चाहिए प्रेम हो चाहिए सब में बड़ा प्रेम प्रेम है तो उसे कभी आपत्ति नहीं है, प्रेम है तो सब कुछ मतलब आपत्ति नहीं आए उसे शांति है, शांति से मतलब हरी सुविधाएं कभी आपत्ति नहीं आए।
1: अच्छा जो आपने प्रेम की बात कही तो ये प्रेम में और काका छिपो, अगर प्रेम ले तो काका अच्छा हो सका
0: प्रेम जो अपने मतलब ईमानदारी काम प्रेम में उबर का काम नहीं था प्रेम में मतलब जीव अजीव काम प्रेम
1: लड़ाई झगड़ा ना उज्जे पैसा टका खर्च ना उज्जे
0: हाँ घरे पैसा रे मतलब जो मतलब लड़ाई झगड़ा वो काम नहीं करना।
1: तो अपनो काके वो है रेडियो में जो भी आपका सुने आदमी कैसे अपने बाप मताई की सेवा करें चाची और कैसे रहे चाची आपका कंचा सब जनन से आपको काके वो है
0: बात तो बात खूब बड़ी है मतलब बाप मताई की सेवा करें
1: तो वही बात तो, बड़ी बात तो, मतलब शुरू से आप बताओ
0: यात्रा ना कछु
1: यही बात है आप यही बात पूछना
0: चाहो
1: से बता दो आप आपका के वो चाहते
0: जो अपने बाप मताई को माने भगवान उनको माने सब इज्जत रहे प्रेम रहे लक्ष्मी जी रहे सब मतलब नहीं की रूप है बाप मताई को छोड़ाओ तो तुम्हारे बाल बच्चे छोड़ा मतलब आगे चली जाइए तो फिर जी मतलब
1: अबे आप तीर्थ यात्रा की बात कर रहे थे
0: तीर्थ यात्रा मतलब जैसे पैसा है देने बाल बच्चे चले जाए तीर्थ यात्रा हुआ अब पैसे निकलते जाकर आ रहे हैं जो मतलब है चले जाओ